मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुम्हारा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं आ तुहां दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने। तुहां सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने।

क्रिश्चियन धर्मशाला गणेशोत्सव तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ। इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ। ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनदे न कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

हाँ बोला करते ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं क्या इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: नहीं है।
1: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओं आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये इशारे ये अदाएं मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो

0: निगाहें हाय हाय ये निगाहें हाय हाय हाय ये निगाहें अरे कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राही अरे कर दे शराबी जिसे चाहे।
1: तो श्रोताओं आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

अरे हम धन को लूटे, अरे वो मन को लूटे, अगर माने वो गोरी, अरे हम इसके चोरी, खूब रहे हम दोनों।

0: मेरी।
1: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप ही का अपना मन रेडियो गुंजन धर्म, और आप सभी हम सुन रहे हैं गीत नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि एक ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं क्या इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 rupees का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो गया, यहाँ मेरे पास जेब में 10 rupees नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

दोस्तों कहते हैं धन दौलत समय के साथ घट सकती है, पर ज्ञान हर दिन बढ़ता जाता है। ना इसे कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान का धनवान होता है, वो हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारे बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों और मनोरंजन के साथ। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की, हाजिर हो गई हूँ इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, और अपनी सेहत का ध्यान भी आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, और साथ ही अपने परिवार का भी। तो आइए दोस्तों इसी खूबसूरत से पल के साथ और नई नई बातों के साथ, नए नए पलों के साथ इस शुरुआत को भी खास बनाते हैं, प्यारा बनाते हैं। आज 4 अगस्त 2026 का दिन, दिन ऐसे बीतते जाएंगे और समय हाथों से निकलता जाएगा, और हम बस यही सोचते रह जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं या क्या किया, बस इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। तो दोस्तों दिनों को बिताना नहीं है, इंजॉय करना है। तो ज़रूर हर पल को खुले दिल से वेलकम कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो आइए इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की खूबसूरत से गीत के साथ, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

0: makes a hangout a great hangout?
1: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इसी के साथ कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की अपडेट की ओर। दोस्तों प्रशांत महासागर में सक्रिय अलनीनो के बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष जुलाई का मानसून उम्मीदों से कहीं अधिक सक्रिय रहा। वर्ष 1901 से अब तक जुलाई अब तक के 125 वर्षों के रिकॉर्ड में जुलाई 2026 ने 62वां सबसे अधिक वर्षा वाला जुलाई महीना बनकर नया मुकाम हासिल किया है। पूरे प्रदेश में जुलाई के दौरान 255.9 मिलीमीटर सामान्य वर्षा के मुकाबले 272.5 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 6% अधिक है। जी दोस्तों, तो ये है कुछ मौसम का मिजाज और मौसम का हाल। तो कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो कहीं कहीं कम भी हो रही है और ये मौसम का रुख है दोस्तों, कभी भी किसी भी तरह से बदल सकता है, लेकिन हमें हमेशा सावधानी के साथ सतर्कता के साथ, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, लैंडस्लाइडिंग्स होती हैं, कहीं पानी नदियों में पानी का बहाव जो है वो बढ़ जाता है तो वो घरों तक पहुंच जाता है क्योंकि हमने नदियों के रास्तों को कहीं ना कहीं रोक दिया है, घर बना दिए हैं, कोई अलग अलग वहाँ पर हमने क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश तो अच्छा करने की करते हैं लेकिन नुकसान हो जाता है प्रकृति का। तो प्रकृति भी हमारे परिवार का हिस्सा है और प्रकृति के बिना बल्कि हम हैं ही नहीं, तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ हमें अपने साथ साथ प्रकृति को भी साथ में लेकर चलना है संरक्षित वेग के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि अभी तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी ढेर सारी बातें और ढेर सारा मनोरंजन बाकी है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

सुबह बहुत ही प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से सफर को इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, आज 4 अगस्त 2026 का दिन, तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हर दिन का अपना एक इतिहास, अपनी एक खास अहमियत होती है। जैसे हर इंसान की अपनी एक कहानी, अपनी एक बोल सकते हैं ना, वैल्यू होती है टैलेंट के हिसाब से, या यूँ कहें कि यूनिकनेस है ना, सभी से हटके हर एक इंसान में होती है, बस उसे थोड़ा सा हमें जानना और पहचानना होता है। खैर, आज की बात हम करें तो दोस्तों, आज का दिन जो है वो आप सभी मना रहे हैं सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे। जो महिलाएं अकेले काम करती हैं, घर संभालती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, ज़रूर दोस्तों उन महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। हालांकि हम उन्हें तानों के साथ जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो ज़रूर आज का दिन ये बहुत ख़ास है उन महिलाओं के लिए। तो ज़रूर बात करेंगे और नज़र दौड़ाएंगे कि आखिर किस तरह से एक महिला जो है अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती हैं, आगे बढ़ती हैं, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती हैं, खुद का भी ध्यान रखती हैं। तो ज़रूर बात करने से पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत, क्योंकि अभी तो ढेर सारी बातें आप सभी तक पहुंचाना बाकी है।

0: दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और समय 9:20 हो चुके हैं। अब ये जो समय है बहुत खास है हमारे आसपास की कुछ खास जानकारियों के लिए। तो आइए दोस्तों लेकर चलते हैं आप सभी को प्रदेश आएंगे अपनी इन ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ।
1: एचआरटीसी के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की अहम बैठक आज शिमला में। विभिन्न जनहित मुद्दों और विपक्ष की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी, आज ऊना बिलासपुर और कांगड़ा जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 120वीं जयंती है। राज्य के लिए उनके योगदान को आज विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से विशेष तौर पर याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में डॉक्टर परमार को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके पश्चात विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया डॉक्टर परमार की याद में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस समारोह में हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार के जीवन पर वृत्त चित्र की प्रस्तुति होगी। राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा आने वाले समय में एचआरटीसी के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी। ये बात कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन जिला के नालागढ़ से प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के लिए नई बस सेवा के शुभारम्भ के बाद कही। उन्होंने कहा कि जनता की मांग के अनुरूप एचआरटीसी नई बस सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी पिछले 52 वर्षों से प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान कर रही है और राज्य में दुर्गम स्थानों तक बस सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगम बना रही है। एचआरटीसी वर्तमान में 27 वर्गों की रियायती यात्रा सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता लगातार निराश हुई है और सरकार ने विकास व सुशासन के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार और जन विरोधी निर्णयों को प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

0: सर्कल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ICDS धर्मपुर द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को योजना के नए दिशा निर्देश, पात्र महिलाओं की पहचान, दस्तावेजों के सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन, NPCI मैपिंग और फेस रिकॉग्निशन आधारित डिजिटल सत्यापन की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम गर्भाधारण या पहली जीवन संतान पर पात्र महिला को 5,000 रुपए, जबकि दूसरी संतान बालिका होने पर 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर से पूरी तरह डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टर पर नहीं बल्कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगी। ये निर्णय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। इस अवसर पर रोहित ठाकुर ने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग से स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलोंग में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। उपायुक्त व जनजातीय मेला समिति की अध्यक्ष किरण भंडारा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनों और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक कलाकार और सांस्कृतिक दल 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष जनजातीय उत्सव के दौरान आयोजित कार्यक्रम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक विरासत पर आधारित होंगे। प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों की फीस में हुई बढ़ोतरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र विरोधी फैसला करार दिया है। ABVP ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, बागवानी विश्वविद्यालय नौणी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में बढ़ाई गई फीस को तत्काल वापस लेने की मांग की है। छात्र परिषद ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता कर बढ़ाई गई फीस को छात्रों पर आर्थिक बोझ बताया। ABVP के प्रदेश सह प्रमंत्री भवानी ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 25-27%, नौणी विश्वविद्यालय में 52-62% और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 30-38% तक फीस बढ़ाई गई है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी है, जिससे राज्य के अनेक स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 109 मार्ग अवरुद्ध है, जबकि 30 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 7 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आज ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा जिला के विभिन्न स्थानों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: अगर मौसम की बात करें, 7 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 4 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके उपरांत 5 अगस्त को कांगड़ा मंडी के लिए रेनफॉल का अलर्ट है। फिर 6 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोनभद्र, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में मॉडरेट कैटेगरी के साथ हैवी रेनफॉल हो सकती है एक दो स्थानों में। और फिर उसके उपरांत 7 अगस्त को चंबा, कांगड़ा मंडी के लिए हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। तो ओवरऑल मानसून है वो काफी सक्रिय रहेगा और लगभग पूरे प्रदेश में ही हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की एक खबर है, हिमाचल को केंद्र से मिले 403,92,00,000 रुपए। प्रतिनियुक्ति पर चल रहे 2 अफसरों को केंद्र से मिली बड़ी जिम्मेदारी, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, निपुण को आर्थिक मामले और विवेक को मिला युवा कार्य विभाग का जिम्मा। पंजाब केसरी की एक खबर है, 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़ हिमाचल में वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में करने की तैयारी। मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है, भारी बारिश, भूस्खलन से 4 पुल बहे, स्कूल भवन ध्वस्त, हाईवे समेत 109 सड़कें बंद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल निर्माता और राज्य के पहले

की 120वीं जयंती आज विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश भर में किया जा रहा है याद। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए HRTC के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की अहम बैठक आज शिमला में, विभिन्न जनहित मुद्दों और विपक्ष की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता जारी, आज ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

विचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, और आज का दिन बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे। हर दिन की अपनी एक खासियत, लेकिन आज के दिन की कुछ अलग खासियत है। वो चलती है सिर ऊंचा करके, हर मुश्किल से लड़ जाती है, अपने हौसलों की रोशनी से जीवन राह सजाती है। ना कोई शिकायत ना कोई गिला, बस कर्म को अपना धर्म मानती, हर आंसू को मुस्कान बनाकर नई सुबह का सपना बुनती। घर की जिम्मेदारी भी उसकी, कार्यालय की पहचान भी, हर रिश्ते को दिल से निभाती और खुद की उड़ान भी। वो अकेली नहीं एक शक्ति है, आत्मविश्वास की जीती जागती मिसाल है। संघर्षों की धूप में तपकर बन जाती है स्वर्ण सा कमल। आओ उसका मान बढ़ाएं, उसके साहस को दें सम्मान, हर एकल कामकाजी महिला का मिले सम्मान अवसर और पहचान। सलाम है उस नारी को जो हर दिन नया इतिहास लिखती है, अपने सपनों को सच करके दुनिया को जीना सिखाती है। तो आइए दोस्तों, उन महिलाओं के सम्मान में आज का दिन उन्हें समर्पित और उन्हीं के लिए इसे खास बनाते हैं। तो एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

दोस्तों, विश्व एकल कामकाजी महिला दिवस यानी कि सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे आज के दिन 4 अगस्त 2026 को आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन उन महिलाओं को समर्पित है जो बिना किसी जीवन साथी के अपने परिवार, बच्चों, माता पिता और अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं। वे केवल अपने घर का सहारा ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। जी दोस्तों, उन महिलाओं के संघर्ष, हिम्मत और जुनून को एक कहते ना हौसला देना, उसे सम्मानित करना, तो उसके लिए कुछ खास पल होने चाहिए। तो आज का दिन वो खास पल है दोस्तों। आज के समय में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो अकेले अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं। कोई विडो है, तो कोई डाइवोर्स्ड है, तो कोई अनमैरिड है, तो कोई अपने परिवार की आर्थिक मजबूरी के कारण अकेले ही सब कुछ संभाल रही है। सुबह घर की जिम्मेदारियां, दिन भर नौकरी, शाम को बच्चों की पढ़ाई और फिर अगले दिन की तैयारी। ये कहने के लिए आसान लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन इन महिलाओं ने साबित किया है कि हिम्मत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, रिश्तों की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक वैल्यू है, लेकिन हम उन महिलाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जो अकेले अपने दम पे पूरे परिवार को भी संभाल रही हैं, चाहे वो कुछ मजबूरियां हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशंस हैं। तो उन महिलाओं से हर एक उस लड़की, हर एक महिला को प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम अपने दम से, अपनी मेहनत से हर एक मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो ज़रूर दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें, और भी ढेर सारी खास बातें हम जानेंगे और इन महिलाओं के संघर्ष के और नज़दीक जाकर इस गहराई को समझेंगे। फिलहाल आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी अपनी रेडियो सेट पर।

तो बहुत ही प्यारा सा ये एक एनर्जेटिक मोटिवेशनल सा सॉन्ग आप सभी ने एंजॉय किया। तो सिर्फ शेर जो है घर के बेटों को ही नहीं कहा जाता दोस्तों, बेटियां या घर में महिलाएं जो हैं अगर पूरी ईमानदारी और हिम्मत और जुनून अगर अपना दिखा दें, लगन के साथ परिवार की जिम्मेदारियों को संभालें, तो शेर वो भी बन जाते हैं। और आज तो दोस्तों आप सभी के सामने हैं सारी घटनाएं, सारी जो बातें हैं जो कि हमारे देश को गर्वान्वित करने वाले हैं। महिलाएं आज किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, हर एक फील्ड में वो अपना परचम लहरा रही हैं, देश का नाम गर्व से ऊंचा उठा रही हैं। तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं उनके सम्मान में आगे आने के लिए, और ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जो कि अकेले सब कुछ मैनेज करती हैं, अकेले घर संभालती हैं, अकेले ही अपने आप को भी संभालती हैं। तो है ना कितना खास पर ये और खास दिन। बिल्कुल, तो इसी के साथ आप सभी को लेकर चलते हैं दोस्तों एक और खास जानकारी की ओर। 15 अगस्त को खुले रहेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेज। जी दोस्तों, 15 अगस्त का दिन नज़दीक आ रहा है क्योंकि अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और अब दिन कैसे बीतते जाएंगे पता नहीं चलेगा। प्रदेश के सभी सरकारी संस्कृत और निजी कॉलेजों में इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे सम्मान गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कॉलेज खुले रहेंगे और राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास पल ये भी है हमारे लिए, खास दिन है क्योंकि आज हम अगर स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत संघर्ष है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानियाँ, जीवन, जिंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। तो उन जिंदगियों के बारे में हम क्यों ना जानें, उन्हें याद क्यों ना करें। तो ये दिन सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन तक सीमित ना रहे, उन बलिदानों, उन कुर्बानियों को याद किया जाए जिन्होंने आज हमें खुली हवा में एक स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए ये जिंदगी दी है। जी दोस्तों, तो खास जरूर बनाइएगा। और आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों, कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने रेडियो सेट से। दोस्तों, कहते हैं ना, काटोगे तो उम्र है, जियोगे तो जिंदगी। दिन तो हर किसी के गुजर जाते हैं, लेकिन हर कोई जिंदगी नहीं जीता। कुछ लोग सिर्फ समय काटते हैं और कुछ लोग हर पल को अर्थ, प्रेम और उत्साह से भर देते हैं। जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि मुस्कुराना, सीखना, प्रेम करना, गलतियों से आगे बढ़ना और हर दिन को बेहतर बनाना है। याद रखिए, उम्र अपने आप बढ़ती है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए साहस, जुनून और जागरूकता चाहिए। इसलिए दिन मत गिनिए, ऐसे काम करिए कि दिन यादगार बन जाएं। क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रहता कि आपने कितने वर्ष जिए, बल्कि ये कि आपने उन वर्षों को कितनी शिद्दत से जिया। जी दोस्तों, तो आज हम कार्यक्रम में बातचीत भी बहुत खास कर रहे हैं, तो वहाँ जुनून और जागरूकता होना कितना ज़रूरी है। अगर हम अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, हर एक मुश्किल को फेस कर रहे हैं, तो सोचिए वो सफ़र कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन वो जुनून और जागरूकता अगर हम में है, तो हम उस पल को भी बेहतर बना सकते हैं, उसे भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन कुछ पहलू होते हैं जो नज़रों से अनदेखे रह जाते हैं, क्योंकि जो देखने में कुछ चीज़ें नॉर्मल होती, वो तो हम सभी देखते भी हैं और उस बारे में बात भी करते हैं, सबके बीच उस बात को रखा भी जाता है। लेकिन कुछ बीच में ऐसे छोटी छोटी सी बातें जो शायद कोसों दूर रह जाती हैं, लेकिन उन पे बात होना बेहद ज़रूरी होता है। तो उन्हीं में से एक दोस्तों कि महिला चाहे जितना भी काम कर ले, कहा तो यही जाता है कि ये घर का काम है और ये तो डेली रूटीन है, ये तो करनी ही होती है। लेकिन एक महिला जब घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती हैं, तो उनके उस साहस को अनदेखा कैसे किया जा सकता है। तो आज का दिन बहुत खास है उन महिलाओं के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बातचीत जो है दोस्तों कर रहे हैं। जहाँ राइट्स की बात आती है तो कहीं उन राइट्स का यूज़ किया जाता है तो कहीं मिसयूज़ भी किया जाता है। लेकिन अगर कोई एक मिसयूज़ करे तो उसके साथ हम सभी को लेकर चलते हैं। कहते ना, अगर एक भी लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाए तो डर सभी पेरेंट्स के अंदर आ जाता है और वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फिर सभी लड़कियों के ऊपर लगनी शुरू हो जाती हैं या उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो बात सिर्फ हमारी मानसिक सोच और नजरिए तक सीमित रह जाती है।

और दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो एकल महिलाएं जो कि अपनी हिम्मत और जुनून के साथ आगे बढ़ती हैं, हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती भी हैं, लेकिन उन्हें कभी भी एक तरह से सराहा नहीं जाता, उनकी मदद नहीं की जाती। खैर, जब हमने हिम्मत और जुनून खुद में वो रख ही लिया है तो हम ये उम्मीद कुछ नहीं भी करते हैं कि कोई हेल्प करे, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही एक बोलते हैं ना कि सिचुएशंस, उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है बहुत कमज़ोर होती है, तो वहाँ हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, बल्कि हम मजाक बनाते हैं, हमें उन्हें जो है वो डिमोटिवेट करते हैं। तो अगर आप में से जो हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं या महिलाएं जो बहनें सुन रही हैं, तो अगर उन्हें लगता है दोस्तों कि वो अपने विचार, अपनी ज़िंदगी का संघर्ष या अपने आसपास कुछ ऐसी बातें होते हुए देखते हैं और वो रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में और अपने विचारों को पहुँचा सकते हैं लाखों लोगों तक। जी, तो नंबर आप सभी जानते हैं दोस्तों, 7018117091, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी कॉल जो है वो लोगों के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो बहुत ही खास बातें और बहुत ही प्यारे प्यारे से ये गीत इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और बना रहे हैं अपनी दिन की शुरुआत को और भी प्यारा। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर 2026 से पूरी तरह डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू होगी। उसके बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टर पर नहीं बल्कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यही नहीं, स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया। जी दोस्तों, तो ये जो है एक बहुत खास और अहम कदम जो है वो उठाया गया है। तो बिल्कुल इसी खास जानकारी के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं, हम भी एक स्टेप और उठाते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से गीत की ओर। सावन का महीना है और दोस्तों प्यारे प्यारे से गीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

दोस्तों हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, पुलिस, परिवहन, कृषि, पर्यटन और निजी क्षेत्र में हजारों महिलाएं अकेले अपने परिवार का सहारा बनी हुई है। जी दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जो महिलाएं अकेले हर एक सिचुएशन, हर एक मतलब कि अपने फैमिली को या अपने आप को संभालती हैं और घर चलाती हैं। इनकी मेहनत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। कभी कभी समाज एकल महिलाओं को अलग नजरिए से देखता है। अनचाहे सवाल, बेवजह सलाह और कई बार सामाजिक दबाव, लेकिन धीरे धीरे सोच बदल रही है। आज महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले रही हैं, अपना घर खरीद रही हैं, व्यवसाय शुरू कर रही हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जी दोस्तों, पहले के समय की हम बात करें तो महिलाओं को या बेटियों को जो है वो बहुत कम उम्र में ही शादी की जिम्मेदारियां जो हैं उनके ऊपर दे दी जाती थी। पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, खास करके लड़कों को जो है पढ़ाई की अहमियत दी जाती थी। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे समय बदला है, सोच भी बदली है, लेकिन आज भी हम ये बोलें कि पूरी तरह से सोच बदल चुकी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आपको ऐसे भेदभाव या ऐसी सोच वाले लोग जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जहां एक अकेली महिला जो अपने घर की जिम्मेदारियां अपने आप को संभाल रही हैं तो लोगों का नज़रिया या लोगों के सवाल या उनकी सलाह बहुत अलग अलग तरीके से होती, क्योंकि लोगों का मानना है कि एक अकेली महिला सर्वाइव नहीं कर सकती, वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, उसे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस पे? क्या ये बात सही है? क्या ये कहना सही है? क्या ये सोचना सही है? वैसे तो आज देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, समाज भी बदल रहा है। आज महिलाओं को उस नजरिए से देखा नहीं जाता है, क्योंकि आज महिलाएं कुछ क्षेत्रों में लड़कों से भी आगे पहुंच चुकी हैं। अगर हम देश की बात करें, देश विदेश में वो अपना परचम लहरा रही हैं, ईमानदारी, जुनून और जज्बे के साथ। बस अपने ऊपर जो है विश्वास होना चाहिए और अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए। अपने हुनर की कदर अगर हम करते हैं तो हमें कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है जो जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सके। तो आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, दुनिया का काम है हंसना। चाहे आप अच्छा करेंगे, वो तब भी हंसेंगे। किसी न किसी वजह, कोई ना कोई बहाना वो ढूंढ ही लेंगे। और अगर आप गलत करेंगे, वो तब भी हंसेंगे। लेकिन जिंदगी में आगे आपको अकेले ही बढ़ना है। जब तक हम किसी के सहारे बैठे रहेंगे तो दोस्तों, जिंदगी अधूरी है और शायद हम फिर कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम बात करें दोस्तों, घर में पहले के समय में, खैर अभी तो बहुत समय बदल चुका है, लेकिन आज भी जो महिलाएं अगर दूसरों पे जो है एक तरह से निर्भर हैं, दूसरों पे डिपेंड हैं, तो सोचिए कि वो घर से बाहर तक बिना किसी से, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ना कि कोई भी स्टेप वो नहीं उठा पाते हैं। एक दवाई तक भी लेने जाना है तो वो नहीं जा पाते, क्योंकि वो दूसरों पे निर्भर है। तो ये बहुत एक अजीब सी बात होती है। सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के समय में, आज के डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर कोई महिला सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, तो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल लेती है, तब भी समाज एक अलग नजरिए से, अलग सोच से उन्हें देखने लग जाते। तो कोई बात नहीं दोस्तों, समाज का काम है कहना, सुनना, और बस अपनी मर्यादाओं में रहकर सही के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी कुछ भी कहे, आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना है और चलना है एक और बहुत ही खास जानकारी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 के वार्षिक परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के बाद पात्र पाए गए छात्र छात्राओं को एक बड़ी राहत दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि ऐसे 376 विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर परीक्षा के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। परीक्षार्थियों के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि बोर्ड उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें उनके घर के सबसे नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित करेगा, ताकि उन्हें परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्री दोस्तों, उन्होंने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के बाद 10वीं कक्षा के 222 और 12वीं के 154 विद्यार्थी इस विशेष परीक्षा के लिए पात्र पाए गए हैं। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और बहुत ही खास बात आज के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, हम जब कोई भी अननोन पर्सन हमारी जिंदगी में आता है तो हम अपनी जिंदगी की जो दिनचर्या है ना, वही बदल देते हैं, अपने उसूलों को बदल देते हैं, अपने एम्स को बदल देते हैं। क्योंकि खास करके महिलाओं की हम बात करें, खैर लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, जब कोई बहुत ही खास बन जाता है हमारी जिंदगी में तो हम उनके लिए सब कुछ छोड़ने को भी तैयार होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, किसी से जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर कर देना बिल्कुल उचित नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और समय के साथ रिश्तों की दिशा भी बदल सकती है। इसलिए अपने जीवन का केंद्र किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्यों और अपने मानसिक संतुलन को बनाइए। याद रखिए कि दूसरों का व्यवहार हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन अपनी भावनाओं को संभालना आपके हाथ में होता है। यदि कोई दूर चला जाए तो उसे जीवन का अंत मत समझिए। हर रिश्ता कुछ सिखाने आता है और हर बिछड़ना हमें और अधिक मजबूत बना कर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वो है जो आपका स्वयं से है। जब आप खुद के साथ मजबूती से खड़े होते हैं, तब किसी के आने या जाने से आपकी पहचान नहीं बदलती, आपके मंजिल नहीं बदलती, आपके जो इरादे हैं वो नहीं बदलते। तो बस इन छोटी छोटी सी बातों को याद रखिए और जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते जाइए।

दोस्तों कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत सनम मूवी का। जी दोस्तों आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बातचीत आप सभी के साथ कर रहे हैं। जी दोस्तों और हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ते भी हैं, बात भी करते हैं, अपने विचार भी साझा करते हैं। और आज की इस खास बातचीत से जुड़े विचार जो हैं वो आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर आइए उनको आप सभी के साथ कनेक्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस बात से संबंधित क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जो आज के समय में एकल महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारी हो चाहे कोई भी हो बखूबी निभाती हैं तो उसी पे बात करें।

0: तो दोस्तों हमारे लिसनर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो नमस्कार रुचिका जी।
0: हेलो नमस्कार मैम,
1: कैसे हो?
0: बढ़िया मैम, आप बताइए।
1: बहुत बढ़िया मैम, आपने टॉपिक बड़ा अच्छा लिया, आप जिस पर बात कर रही हैं तो मैंने सोचा इसमें कॉल करना बनता है।
0: जी मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
1: थैंक यू जी।
0: जी जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, जो कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो आज के समय में अकेले हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रही हैं और हर एक सिचुएशन को फेस कर रही हैं।
1: जी मैम, देखा जाए जैसे जिनके जो विडो वगैरह हैं या कुछ भी हैं, देखा जाए तो फाइनेंशली वो चलो इतना मतलब धीरे धीरे वो स्ट्रगल करती हैं तो फाइनेंशली प्रॉब्लम नहीं आती उनको
0: जी।
1: लेकिन जो ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके हस्बैंड घर में रहते हैं या काम भी जॉब वगैरह कुछ भी करते हैं लेकिन उनको घर खर्च नहीं देते हैं
0: जी,
1: तो उन पर ना बड़ा काम उन पर मैं देखा कब मतलब उन पर ज्यादा इतना ध्यान नहीं देते लोग, लेकिन उनको ना अगर जिस लेडीज का ना हस्बैंड अच्छा नहीं होगा ना तो बातें उस लेडीज को ही सुनने को मिलती हैं और लोग उसको किस नजर से देखते हैं वो बड़ी अटपटी बड़ी गंदी नजरों से देखते हैं उनको, तो उनके लिए ना उनके विचार भी बड़े गंदे होते हैं ऐसी लेडीज के लिए लोगों के। तो एक लेडीज जो इतना स्ट्रगल करती है तो वो अकेले तो पाल लेती है, चाहे जो मतलब जॉब करती है या कुछ वो तो चलो अपने बच्चे पाल लेती है, लेकिन एक लेडी जो घर में रहती है जो जिसका हस्बैंड खर्च नहीं दे रहा, वो जैसे तैसे कभी उसके मायके वाले खर्चा देते हैं या कभी वो घर में कुछ टीचिंग करती है या किसी के घर में काम करके कर रही है अपना गुजारा, बच्चे तो वो पाल रही है। तो मैंने ऐसे ही बड़े सारे लोग इधर देखे और उन मैंने ये चीज़ देखी जब उन्होंने मेरे साथ उस लेडीज ने ऐसी एक दो लेडीज हैं उन्होंने मेरे से बात लगाई, जब एक तो फिर मैंने एक बार मुझे उसके हस्बैंड मिले मैंने उनसे बात नहीं करी, लेकिन वो मैंने देखा तो वो दुकान में जाकर अपनी वाइफ के बारे में बड़ा कुछ बोलते बोलते मेरी वाइफ वो ऐसे काम करती है, मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ उसको, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मुझे इतना वक्त ही नहीं है और मेरे पास इतना काम है कि मुझे तो एक मिनट के लिए टाइम नहीं है, तो वो बाहर डींगे इतनी मारते हैं लेकिन घर में क्या हाल है उनका। तो वो उन लेडीज की सिचुएशन देखिए, वो फिर भी इतना कुछ कर रही हैं और उनके उनको लोग समाज जो है हमारा ही समाज जो किस नजर से देख रहा है
0: जी जी।
1: और दूसरी बात की इसमें ज्यादातर देखा जाता है तो ज्यादातर सास की और नंदों की बड़ी ज्यादा गलती होती है, तो एक औरत ही औरत की दुश्मन है। मैं बस छोटे से इसमें यही बोलना चाहती थी कि ऐसा जैसे वो दूसरी की बहू को लेके आए हैं तो उनके साथ ऐसा, मैं वो भी किसी की बेटी है तो अगर अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा हो तब क्या हो, आपको कैसा फील होगा?
0: जी बिल्कुल सही कहा है इंदु जी आपने, बहुत से घरों में ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं कि मतलब कहते हैं ना कि हम तो हर एक गम को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज जिस समाज की हम हर बात पे बीच में लेकर आते हैं कि समाज क्या कहेगा, तो वहीं हम अपने हौसलों को भी कहीं टूटता हुआ नजर पाते हैं
1: जी मैम। और दूसरा देखो ना, सबसे बड़ी बात है कि जब वो पति सही नहीं है, है ना, तो वो उस पत्नी को तो ऑब्वियसली मतलब उसको तो काम करना, अगर वो सही होता तो उसको जरूरत नहीं पड़ती काम करने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर वो कई तो होते हैं चलो खुद पढ़ी लिखी हैं वो तो सेल्फ डिपेंड है ठीक है, लेकिन कईयों को तो मजबूरी में काम करना पड़ता है मैम
0: जी।
1: तो ये सब जो देखा ना मैंने, और उनके ही हस्बैंड ऐसे भी होते हैं कि सच में वो ऐसे ही देखे मैंने मैक्सिमम, इतने मेरी भी उम्र हो गई लेकिन मैंने वो डींगे मारते देखे, लेकिन लोगों के सामने बड़े अच्छे बनते लेकिन घर में चाहे वो सब्जी तक नहीं लाते और बाहर दुकानों में जाके खुद शाम को 5-5, 6-6 अंडों का आमलेट भी खा रहे हैं और उन अपनी वाइफ की बेइज्जती भी कर रहे हैं उधर, जब वो घर की बेइज्जती कर रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं कि वो मतलब किसकी बेइज्जती हो रही है
0: जी, वो खुद की ही हो रही है, ऑब्वियस सी बात है
1: ना। तो बस मेरा इतना सा बोलना चाहती थी ऐसे पतियों को और ऐसे के माओं को जो ऐसा ये सब दूसरी की बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए
0: जी।
1: जैसे हम खुद किसी की लड़की हैं, जैसे हमारी लड़कियां आगे जाएंगी या गई हैं तो वैसे वो भी किसी की लड़की और वो भी आई है
0: जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए
1: जी। मैम थैंक यू मैम
0: जी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। कई बार हम बाहर दिखावे के लिए तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन घर में हम बहुत ही अलग सा व्यवहार जो है वो अपने परिवार के साथ जो है वो दिखाते हैं। तो यदि परिवार और समाज महिलाओं का सहयोग करें तो उनका आत्मविश्वास जो है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। सिर्फ सम्मान, विश्वास और बराबरी का व्यवहार किसी भी महिला की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जी दोस्तों, महिलाओं में बहुत सहन शक्ति होती है और वो बहुत कुछ कर दिखाना चाहती हैं, लेकिन वही बात है ना कि मजबूरियाँ और ये जो समाज के ताने हैं, एक तरह से ताने हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई महिला किसी के घर में अगर अपने परिवार को चलाने के लिए काम करने जाती भी हैं या कोई भी वो और तरीके से अपना घर चला रही हैं किसी भी तरह से, मतलब कि कोई मेहनत मजदूरी करके, तो कुछ लोग उन्हें भी उस बात के लिए भी टॉन्ट करते हैं कि इन्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, ये क्यों जाती हैं। देखिए दोस्तों, घर घर की बात होती है और जिसके घर में वो सिचुएशन होती है उनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। कहते हैं ना, दर्द वही महसूस कर सकता है जिसके साथ बीता हुआ हो या जिसका समय उससे गुजरा हुआ हो। तो हम बिना किसी टॉन्ट के, बिना किसी बात के उनका साथ दें, उनका सहयोग करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं दोस्तों जो कि ज़िंदगी में हमें एक बड़ा इंसान भी बनाती हैं और एक छोटा इंसान भी बनाती हैं हमारी इस सोच की वजह से। तो जहाँ हम कहते हैं कि हमारी सोच बदल रही है तो उसे सिर्फ कहने तक सीमित मत रखिए, उसे वाकई में बदल कर दिखाइए, तभी देश बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

जी दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जो अकेले जीवन की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो उनकी आलोचना नहीं बल्कि उनका सम्मान कीजिए। जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि मजबूत समाज वही है जहां हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर हो। सशक्त महिला केवल अपना भविष्य नहीं बदलती, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवारती है। आत्मनिर्भर महिला किसी की कमजोरी नहीं, समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। विश्व एकल कामकाजी महिला दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हर महिला को सम्मान, समान अवसर और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। हम सभी मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां हर महिला बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा कर सके। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ दोस्तों, अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। जी दोस्तों, तो आज का ये बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात एक नई जानकारियों के साथ, नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि एक ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं क्या इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Ha ha ha!

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले दो।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या, या मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है? आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Ha!

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, 4 अगस्त 2026 का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज का दिन स्पेशल आप सभी ने मनाया है महिलाओं के लिए, जो कि एकल अकेले होकर भी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाती हैं। जी दोस्तों, तो आज का ये दिन और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। विषय कुछ और रहेगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं हर बात जो है हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हो, हमारी जो अनुभव हो उनसे जुड़ी हो, तो क्या बात है। बिल्कुल, तो अभी ये जो खास कार्यक्रम आप सभी सुनने वाले हैं, इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे अंजलि सूद मैम। जी दोस्तों, इसमें हम बहुत ही खास शिक्षा से संबंधित बातचीत करने वाले हैं। तो फिलहाल इस प्यारे से गीत को एंजॉय कीजिए और उसके बाद वापस आते हैं आप सभी के साथ आज की इस खास बातचीत के साथ।

0: तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया किशोर कुमार की आवाज के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी आज के इस खास बातचीत में जुड़े हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और हमारे इस खास बातचीत में आज के मेहमान भी बहुत खास हैं दोस्तों, अंजलि सूद मैम जी। तो स्वागत है मैम आपका हमारी इस खास बातचीत में रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैम जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो है शिक्षक हैं। तो मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए।
1: मेरा नाम डॉक्टर अंजलि सूद है। मैं चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कम्युनिटी साइंस महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ और जो मेरा सब्जेक्ट है वो टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइनिंग है और जो हमारा कम्युनिटी साइंस विषय है वो एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी और डायनेमिक सब्जेक्ट।
0: जी तो मैम आज हम बहुत ही खास बातचीत जो है अपने दोस्तों के साथ करने जा रहे हैं कम्युनिटी साइंस पे।
1: जी
0: तो सबसे पहले हमारे दोस्तों को ये बताइए कि ये कम्युनिटी साइंस सब्जेक्ट जो है ये होता क्या है और क्या इसका महत्व अगर हम बच्चों की जिंदगी में देखें तो किस तरह से रहता है।
1: कम्युनिटी साइंस एक नया टर्मिनोलॉजी है और ये सब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट है ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। इसमें साइंस का फील्ड के सब्जेक्ट्स भी आते हैं, इसमें आर्ट्स के फील्ड के, फाइन आर्ट्स के फील्ड के सब्जेक्ट आते हैं, क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप करने के फील्ड्स के सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट उसके सब्जेक्ट्स भी आते हैं और साथ में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और एक्सटेंशन जो भी हम सीखते हैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है वो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। साथ में एक ह्यूमन एंगल और सोसाइटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट का एंगल भी इस सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है। तो काफ़ी चीज़ों का मिला जुला ये एक प्रोग्राम है जो कि बच्चों को तैयार करता है आगे की लाइफ के लिए और दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल हटके है और ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काम करता है स्टूडेंट्स की।
0: जी मैम तो आपको कितना समय हो गया मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ाते और बच्चों के साथ डील करते?
1: मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए और बच्चों के साथ डील करते हुए। उससे पहले भी मैं एक प्रोजेक्ट में काम करती थी वहीं कॉलेज में। अब मैं जो है टीचिंग में हूँ और हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड से, रूरल और अर्बन दोनों बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं आगे जाकर।
0: जी तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि कम्युनिटी साइंस आखिर क्या है और किस तरह से जो है ये बच्चों की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ज़रूर हम और भी मैम से बहुत ये खास जानकारी जानेंगे कि आखिर किस तरह से बच्चे इस फील्ड में जा सकते हैं और कैसे अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ। तो फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, कटी पतंग मूवी से लिया था और किशोर कुमार की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया। और आज का ये बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अंजलि सूद मैम जुड़े हैं, जो कि बात कर रहे हैं कम्युनिटी साइंस सब्जेक्ट की, क्यों बच्चों को इस विषय की ओर जाना चाहिए, किस तरह से वो उनके करियर में हेल्पफुल होता है, किस किस तरह से वो इसका प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अपनी बातचीत में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मैम की ओर। तो मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी साइंस सब्जेक्ट की, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चों की हम बात करें तो उनकी लाइफ में ये आगे किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, या पाथवेज मतलब कि किस तरह से वो आगे ग्रो कर सकते हैं।
1: जी रुचिका, अगर हम कम्युनिटी साइंस की बात करें तो मैंने जैसे भी बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम चलते हैं
0: जी।
1: और पांच मेन सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स इस कोर्स के अंदर रहते हैं। तो वो पांच सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है फूड साइंस, न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे हम सब जानते हैं कि फूड जो है, खाना जो है, वो एक बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बींग की। तो उसके बारे में जानकारी होना, क्योंकि अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी या पढ़ते भी होंगे, तो फूड को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दी गई है और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए और किसको क्या खाना है
0: जी।
1: है ना। तो फूड साइंस जो है वो बताती है कि कौन से फूड में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या पोषक तत्व हैं, कितने प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उस फूड के अंदर हैं। तो वो साइंस की जो जानकारी है वो उसके अंदर दी जाती है। फिर आती है न्यूट्रिशन की, उस फूड से हमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं, तो उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को पूरा बताया जाता है। और साथ में थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, मतलब बीमारी में कैसे न्यूट्रिशन रहनी चाहिए, और डाइटेटिक्स कि डाइट कैसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस होते हैं या बहुत ऐसे कंसल्टेंट, प्राइवेट कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो डाइट से रिलेटेड कंसल्टेंसी करते हैं, या फिर जो जिम्स हैं या कोई इस तरह के सेंटर्स हैं वो भी अपना एक डाइटिशियन रखते हैं। तो वो पर्टिकुलर किस ह्यूमन बीइंग को, उसकी बॉडी कंडीशन कैसी है और उसको क्या डाइट लेनी चाहिए, जो भी वो गोल अचीव करना चाहता है उसके हिसाब से, तो वो डाइट काउंसलिंग और वो सब, तो वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है स्टूडेंट्स को दी जाती है। देन आता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या है कि आज के ज़माने में हम देखते हैं

0: टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी करवाई जाती है
1: जी।
0: फिर जो सेकंड सब्जेक्ट हमारा इसके अंदर आता है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, ये मेरा भी सब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि टेक्सटाइल्स क्या है, कपड़ा क्या है, ये भी एक बेसिक ह्यूमन नीड है, रोटी कपड़ा और मकान में से
1: जी।
0: तो फूड की हमने बात कर ली, देन आता है कपड़ा। तो बिना कपड़े के तो कोई नहीं रहता, सबको जरूरत है, काम ज़्यादा वेस्टर्न इंडियन जैसा भी पहनना है ना
1: जी।
0: तो कपड़ा क्या है, कैसे बनता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसको धागे, जैसे रेशा है, रेशे से धागा कैसे बनता है, धागे से कपड़ा कैसे बनेगा, उसकी अलग अलग प्रोसेसेस रहती हैं तो उनकी जानकारी। फिर कपड़ा बन गया तो प्लेन कपड़ा तो नहीं पहनते ना हम, सब रंग बिरंगे और डिज़ाइन वाले कपड़े पहनते हैं, तो उसको फर्दर कैसे हमने उसको एम्बेलिश करना है, उसकी सरफेस को कैसे एनरिच करना है, वो टेक्निक्स, चाहे वो डाइंग के थ्रू हो, चाहे वो प्रिंटिंग के थ्रू हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, पेंटिंग हो, या कोई और मॉडर्न टेक्निक हो, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। पर कपड़ा तो एज सच हम नहीं पहन सकते, तो हम कपड़े को एक गारमेंट में या यूजेबल प्रोडक्ट में, क्योंकि कपड़ों का यूज़ सिर्फ पहनने में नहीं है, और भी घर में, गाड़ी में और हमारे आसपास बहुत जगह जो है वो कपड़ों का यूज़ होता है। और आप सोचिए कि मतलब एयरक्राफ्ट में जो चेयर कवर्स से लेकर, और जैसे वाटर रिटार्डेंट अम्ब्रेला फैब्रिक है, आपके रेन सूट्स हैं, आपके फायर रिटार्डेंट सूट्स हैं, आपके जो एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल्स, तो बहुत सारी टेक्निकल एप्लीकेशंस भी उन कपड़ों की होती है। तो उन चीज़ों में कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या फिनिशेस हो सकती हैं जो उसकी यूजेबिलिटी को बढ़ाती हैं, और जो भी हमारा डिज़ायर्ड एंड प्रोडक्ट है वहाँ तक हमने कैसे पहुँचाना है। तो वो कंस्ट्रक्शन जो है, चाहे गारमेंट की है, चाहे डिज़ाइनर गारमेंट्स की हैं और चीज़ों की है, अपहॉल्स्ट्री जैसे सोफ़ा कवर्स हैं, आपके कर्टन्स हैं, आपके टेबल लिनन है, तो वो सब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यूजेबल प्रोडक्ट फैब्रिक का कैसे बताना है वो बताया जाता है, डिज़ाइनिंग का पूरा आस्पेक्ट्स बताए जाते हैं, उसमें एक्सेसरी डिज़ाइनिंग भी है, अपैरल डिज़ाइनिंग के भी हैं। देन आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो एंड में जो कस्टमर है उस तक कैसे पहुंचाना है, रिटेलिंग एंड मर्केंडाइजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाती है। तो इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स और ये सब होम टेक्सटाइल्स है, मेडिकल टेक्सटाइल्स है, बहुत सारे एडवांस्ड फील्ड्स, एग्रो टेक्सटाइल्स जो हैं वो सब भी अब आ गए हैं, तो उससे रिलेटेड भी कोर्सेज जो हैं इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर आता है एक हमारा डिपार्टमेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंसेज। तो हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं और रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सामान है हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उनका कैसे सही उपयोग करना है ना, उपयोग मतलब यूज़ तो करते हैं पर उसका सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है, तो वो जो जानकारी है और उसको सही तरीके से समझने और सोचने की क्षमता कैसे बढ़ानी है, उसको उसकी जानकारी इस विषय में दी जाती है। और क्योंकि कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, हम सब उपभोक्ता हैं और लगातार रोज़ कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, तो उसमें जो है कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर हमारी क्या राइट्स हैं, हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम कैसे अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते
1: हैं।
0: जी तो उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी, और इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग आस्पेक्ट्स जो हैं वो, क्योंकि अब सिंपल ना घर चाहिए किसी को, ना स्टूडियो चाहिए, ना वर्क प्लेस चाहिए, सब डिज़ाइन ओरिएंटेड है, तो वो है। और इवेंट मैनेजमेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो इस सब्जेक्ट में कवर किया जाता है। और साथ में जैसे हम हिमाचल की बात करें तो उसमें इको टूरिज्म से रिलेटेड भी बताया जाता है। और एक और चीज़ है वर्क सिंप्लीफिकेशन और अर्गोनॉमिक्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल फैशन वाली टर्म है, तो कैसे हम जो है अपना पोस्चर सही रख के, अपने फर्नीचर को सही डिज़ाइन करके, अपने घर को या ऑफिस को सही तरीके से डिज़ाइन करके अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और फिज़िकल लोड कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी जो है वो दी जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। तो जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है तब से मरने तक की क्या स्टेजेस रहती हैं,

0: हैं, डेवलपमेंट की क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या क्या साइकोलॉजी में चेंज आ रहा है, कैसे सोशियोलॉजी अफेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को, तो वो सब विषयों के बारे में पूरी जानकारी और काउंसलिंग, प्ले स्कूल्स कैसे रन होते हैं, बच्चों की काउंसलिंग कैसे करते हैं, अडल्ट्स की काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में,
1: बिल्कुल जी
0: तो वो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूरा ह्यूमन का डेवलपमेंट का एंगल जो है वो उसके अंदर कवर किया जाता है। फिर एक पांचवा जो डिपार्टमेंट रहता है हमारे यहाँ वो है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो जो भी हम इन चार विषयों में सीखते हैं उनको आगे पहुंचाने की क्या कला रहती है, कैसे पहुंचाना है, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं, और कैसे कैसे हम बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपने मैसेज को जो हमारा टारगेट ग्रुप है उस तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जानकारी होना एक बात है, वो अपने तक सीमित रह जाए तो वो उस जानकारी होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर वो हम किसी को बताना चाहते हैं, किसी को आगे उसका लाभ उठा सके कोई, तो उसके लिए कैसे हम उसको प्रसार और प्रचार करें उस जानकारी का, और उसके रिलेटेड हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो कैसे होने चाहिए, यंग अडल्ट से बात कर रहे हैं तो
1: किस
0: अलग
1: तरह से
0: तरीके से
1: बिल्कुल
0: होगी, है ना,
1: जी
0: गांव में जाते हैं तो
1: अलग
0: अलग
1: तरह
0: तरीके से
1: से
0: होगी, अगर हम
1: शहरों में
0: शहरी,
1: जाते
0: हाँ
1: हैं
0: शहरी परिवेश में हैं तो वो अलग तरीके से होता है।
1: जी
0: फिर जैसे स्पेसिफिक नीड्स हैं तो उनको एड्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे, कोई पढ़ सकता है कोई नहीं भी पढ़ सकता है, किसी को पेक्टोरियल हमें बताना है, किसी को लिख के बताना है, किसी को बोल के समझाना है, तो वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो बच्चों को इस सब्जेक्ट में सिखाई जाती हैं। तो फिर जब हम जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो इस प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के साथ साथ अभी नई शिक्षा नीति 2020 वाली लागू हो चुकी है,
1: जी
0: तो उसमें करिकुलम में कुछ कुछ चेंजेस भी आए
1: चेंजेस
0: हैं, तो उसमें स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज वो जो हैं कंपलसरी हैं स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी करते हैं, तो जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं उनसे हट के होते हैं, और वो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू अगर बच्चा अपना कोई एंटरप्रेन्योर सेट करना चाहता है तो उसकी तरफ वो बढ़ सकता है। और उसके साथ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कोर्सेज भी होते हैं कि सही तरह से एप्टीट्यूड जो एक सोच है वो सही दिशा में चले स्टूडेंट की, तो उसके टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स भी कवर किए जाते हैं। और साथ में कुछ कॉमन कोर्सेज रहते हैं हमारे अलाइड फील्ड्स के, जैसे हमारा अलाइड फील्ड एग्रीकल्चर में है, वेटनरी में है, और कुछ बेसिक साइंस के कोर्सेज भी रहते हैं, तो उनके बारे में भी कंप्लीट जानकारी जो है बच्चों को थ्रू कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने जाना देखी कितनी ढेर सारी जानकारी और बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस जो है वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इस सब्जेक्ट के माध्यम से मिल सकते हैं। आज के समय में कौन ही ऐसा मतलब कि कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहते कि अपने घर को अच्छे से मेंटेन किया जाए, खुद को जो हम कपड़े पहन रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो उसकी हर एक जानकारी हमें ना हो। तो देखिए कितना बेहतर ये एक अवसर है आप सभी के लिए। तो बिल्कुल अगर अभी भी हमारे दोस्तों में से बच्चे सुन रहे हैं इस प्यारे से खास जानकारी को, या उनके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं और उनके मन में कोई सवाल आ रहे हैं और वो पूछना चाहते हैं डायरेक्टली डॉक्टर अंजलि मैम से, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 बजे तक आप अभी ये कार्यक्रम सुन सकते हैं दोस्तों। तो आप जुड़ने के लिए हमारा नंबर जो है वो डायल कर सकते हैं 7018117091। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ दोस्तों, 7018117091। नंबर पे कॉल कीजिए और अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली मैम से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश अगर इच्छा आपकी है तो आप ज़रूर पढ़िए। तो फिलहाल हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही खास आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और हमारे खास मेहमान डॉक्टर अंजलि मैम के साथ। तो आइए, बहुत ही खास बातचीत कम्युनिटी साइंस पे हम कर रहे हैं, क्यों और किस तरह से ये आज की समय में बच्चों के लिए हेल्पफुल है, और करियर में भी हम बात करें तो किस तरह से बच्चे इसमें अपने करियर को बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मैम की ओर और जानने के लिए और अपने आप को एनहांस करने के लिए। जी, तो मैम, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आपने बताया कि किस किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंडर आते हैं और क्या क्या इसमें कराया जाता है, कौन कौन सी जानकारियाँ दी जाती हैं। लेकिन हम कहीं भी कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी हम कोचिंग देते हैं, तो सबसे मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि हमारी जो एक तरह से जॉब का जो एक पाथवे है,
1: जो भी कोई पढ़ाई करते हैं, तो हमारा एंड गोल जो है वो इकोनॉमिकली हम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं।
0: तो उस पे हमारे दोस्तों को थोड़ा सा और इस पे जो है गहराई से बताइए कि किस तरह से उनके लिए ये जॉब पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रह सकता है, किस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं।
1: तो जो कम्युनिटी साइंस के मैंने डिपार्टमेंट्स अभी एक्सप्लेन किए, तो हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं
0: जी।
1: और जैसे मैंने कहा कि स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, तो जब हम बीएससी में किसी भी स्टूडेंट को एनरोल करते हैं तो उनको आते ही इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट के अंदर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज को चूज़ करना होता है
0: जी।
1: तो एक तो वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें उनका इंटरेस्ट बन गया उसके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी वो बच्चे कर रहे हैं, फिर उसके साथ जब बच्चे 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर में आते हैं या उससे भी पहले जब 7th सेमेस्टर में आते हैं, क्योंकि ये 4 साल की डिग्री होती है, ऑनर्स प्रोग्राम है, तो उसमें जब 4th ईयर में आते हैं तो आते ही इलेक्टिव कोर्सेज लेने होते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज क्या हैं कि कोई एक सब्जेक्ट इन 5 में से जिसमें उस स्टूडेंट की रुचि जो है वो डेवलप हो गई है, तो उसके कुछ एडवांस्ड कोर्सेज जो हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, और काफ़ी एडवांस सिलेबस उन इलेक्टिव कोर्सेज का रहता है, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर या बीएससी के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स पाते हैं। तो जब वो वहाँ इंटर्नशिप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर करके आते हैं तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि जहाँ वो इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ उनको जॉब्स भी काफ़ी ऑफर हो जाती हैं। तो अगर हम फूड्स की बात करते हैं, फूड से रिलेटेड डिपार्टमेंट में, तो उनको फूड प्रोडक्शन रिलेटेड रोल्स के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर रोल के लिए, और हेल्थ केयर सेक्टर में, डाइटेटिक्स में और मील प्लानिंग में, इस सेक्टर में जॉब्स ऑफर होती हैं, और साथ में रिसर्च और टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं, अगर कोई रिसर्च की साइड भी थोड़ा जाना चाहता है। पर वो अपॉर्चुनिटीज़ रिसर्च वाली थोड़ी मास्टर्स मतलब एमएससी करने के बाद या पीएचडी करने के बाद थोड़ी ज़्यादा होती हैं। बीएससी वाले बच्चे जो सिर्फ बीएससी करता है उसके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, डाइटेटिक्स में, मील प्लानिंग में, डाइट प्लानिंग में, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, फूड प्रोडक्शन सेक्टर में, ये सब जो है फ्लोर मैनेजर्स और ये सब की जॉब्स जो हैं वो ऑफर होती हैं। देन अगर हम टेक्सटाइल्स वाली साइड देखें तो फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फैशन मर्केंडाइजर, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चे ऑप्ट करते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल जो इन सब फील्ड्स में रहता है उसके सब्जेक्ट मतलब तरफ भी बच्चे अपना करियर पाथवे

0: जो है वो चूज कर सकते हैं।
1: जी
0: कोई अपना भी काम करना चाहता है तो बुटीक्स खोल सकते हैं, सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स डेवलप करते हैं कई बच्चे, और साथ में जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी देते हैं, तो उस फील्ड में भी उनके कंजर्वेशन प्रजर्वेशन और साथ में उनको डेवलप करके और एंटरप्रेन्योरियल जर्नी उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के अंदर।
1: जी
0: और साथ के साथ अगर मास्टर्स कोई बच्चा करता है और पीएचडी करता है तो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और मास्टर्स वगैरह करने के बाद जो है टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत ही वास्ट फील्ड है टेक्सटाइल के सेक्टर में, उस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज जो हैं बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है तो उसमें प्री स्कूल्स हैं, क्रेच है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, या फिर अडल्ट एल्डरली केयर वाले सेंटर्स हैं, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ खोलने की रहती हैं। उन सेंटर्स में जॉब्स भी अवेलेबल रहती हैं और साथ में काउंसलिंग और इस तरह की जॉब्स भी, स्कूल काउंसलिंग है, अपना प्राइवेट आपने काउंसलिंग सेंटर खोलना है तो उससे रिलेटेड भी रहता है, और ह्यूमन केयर के जो आस्पेक्ट्स डिफरेंट हैं उन हर सेक्टर के अंदर जॉब्स की अवेलेबिलिटी रहती है। और फिर अगर रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करें तो उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैंने आपको बताया था, फिर इवेंट मैनेजमेंट एक अपकमिंग फील्ड है उसके अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिज़ाइनर्स भी रहते हैं उसके अंदर, मैनेजर्स की पोस्ट है उसके अंदर। देन आप अपना कुछ सेटअप खोलना चाहते हैं तो आप इतना ट्रेन हो जाते हैं 4 साल में कि आपके पास स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का भी नॉलेज है, इलेक्टिव का भी नॉलेज है, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का भी नॉलेज है, तो आप उसमें जा सकते हैं। साथ में आप थोड़ा सा रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है उस तरह की काउंसलिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन एक्सपर्ट्स, अर्गोनॉमिक्स का अच्छा अगर नॉलेज है तो आप वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए जो जो टेक्निक्स हैं उन एक्सपर्ट्स के तौर पे काम कर सकते हैं आप, और साथ में बजटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट वाला फील्ड है उसके अंदर डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके एनजीओ सेक्टर में इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, विलेज लेवल वर्कर्स हैं, और इस तरह की जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो भी सर्विसेज किसी भी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा दी जाती हैं, कोई चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट के हैं, उन सेक्टर्स में भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं।
1: जी दोस्तों, तो मैम ने बहुत ही अच्छे से आप सभी को डिटेल में बताया है कि किस तरह से जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटी इस कोर्स के अंडर रहती हैं, किस तरह से, वैसे तो जिस तरह से इसमें सब्जेक्ट्स हैं वहीं से पता चल रहा है कि हम कैसे अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और खुद को इंडिपेंडेंट जो है वो बना सकते हैं। तो ज़रूर इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आप सभी इसी तरह से जुड़े रहिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर।

0: दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंचन धर्मशाला 91.2 MHz पर, और बहुत ही खास बातचीत आज के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं इस खास जानकारी को। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और जैसे कि मैम हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी साइंस कोर्स की
1: जी,
0: तो हमने बात की कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें रहते हैं और किस तरह से जो प्रस्पेक्टिव जो है बच्चों के लिए इसमें बन सकता है
1: जी।
0: लेकिन सबसे खास बात, बच्चों को ये भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि कोर्स तो चलो बहुत अच्छा है, हर एक इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मेन बात कि इसकी फीस कितनी रहेगी या हम कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं
1: जी।
0: तो हमारे दोस्तों को और हमारे जो युवा साथी जो बच्चे इस समय सुन रहे होंगे तो उन्हें ये बताइए कि कैसे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है।
1: तो जो BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है वो एक 4 साल का प्रोग्राम है
0: जी।
1: और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में, जो कि एक सरकारी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर चलाया जाता है। और इस तरह का ये कोर्स ऑफर करने वाला हिमाचल में सिर्फ एक ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, और कहीं भी हिमाचल में इस तरह की शिक्षा जो है वो प्रदान नहीं की जाती। हमारे पड़ोसी राज्यों में तो कई कॉलेजेस हैं जो इस तरह की शिक्षा देते हैं, पर हिमाचल में सिर्फ कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस पालमपुर में जो है वही इस सब्जेक्ट की शिक्षा जो है वो प्रदान करता है
0: जी।
1: तो रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन्स प्रिय साथियों अभी खुले हैं। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का प्रॉस्पेक्टस निकल चुका है और हमारी वेबसाइट है www.hillagric.ac.in। मैं दोबारा बोलती हूँ, www.hillagric.ac.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक टिकर चलता है एडमिशंस 2026। तो जब हम उस पे क्लिक करते हैं तो वो वहाँ बहुत सारे प्रॉस्पेक्टस की ऑप्शंस आती हैं, तो आपने क्लिक करना है मेरिट बेस्ड एडमिशन ब्रोशर पे। तो मेरिट बेस्ड एडमिशन ब्रोशर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको 4 प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। उसके अंदर एक प्रोग्राम रहता है BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें एडमिशन के लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है आपके प्लस टू के मार्क्स पे बेस्ड एडमिशन है, और प्लस टू में पर साइंस बैकग्राउंड जो होना है वो ज़रूरी है। अगर आप PCM या PCB उनमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साथ में इंग्लिश अगर आपने पढ़ी है तो इस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये एडमिशन ओपन रहती है, और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 10 अगस्त है 2026। तो अब दोस्तों आज 4 अगस्त है तो अभी भी आपके पास समय है, समय रहते आप अप्लाई कर सकते हैं, और रात को 12 बजे से पहले ये पोर्टल जो है अप्लाई करने का वो बंद हो जाएगा 10 अगस्त को। तो जल्दी आप अप्लाई करें इस कोर्स के लिए। तो इस टाइम आपको प्रॉस्पेक्टस में जो सब्जेक्ट में एडमिशन मतलब प्रॉस्पेक्टस की फ़ीस जो है वो देनी पड़ती है, और अगर आपका दाखिला हो जाता है तो उस समय जो है जो फीस है, क्योंकि ये प्रोग्राम 8 सेमेस्टर्स का है या 4 साल का है, 4 सालों को, हर साल को 2 सेमेस्टर्स में बांटा गया है, तो पहले सेमेस्टर में करीब करीब 31,000 की फ़ीस लगती है, और दूसरे सेमेस्टर में फ़ीस जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ एनुअल चार्जेस होते हैं जो सेमेस्टर के एनुअली शुरू में लिए जाते हैं, और कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बाद में रिफ़ंड हो जाती हैं डिग्री कंप्लीट होने के बाद
0: जी।
1: तो शुरू में जब हम एडमिशन लेते हैं तो 31,000, पर अगर कोई लड़की है जो BPL बैकग्राउंड से आती है तो उसको 10,000 ट्यूशन फ़ी की छूट मिलती है, और 21,000 रुपये के आसपास जो है वो फीस लगती है। अगर कोई बच्चा पालमपुर के आसपास का है तो वो घर से आ जा सकता है, और अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो हॉस्टल की कुछ सुविधाएं हैं, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल में रह सकते हैं, नहीं तो बाहर जो है रूम लेकर या PG में भी आप रह सकते हैं, तो उसका थोड़ा एडिशनल खर्चा जो है वो आता है
0: जी।
1: तो एक बार फिर बता दूं कि www.hillagric.ac.in उस पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं याद रह रहा है URL, तो आप जो है चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय उसके लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो भी अगर सर्च करेंगे तो वही वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। तो 10 तारीख लास्ट डेट है और अप्लाई करने की, और उसके बाद जो अप्लाई करेंगे वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगी और एक काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में स्टूडेंट को खुद आना होता है और उसके लिए 26 अगस्त की डेट जो है वो रखी गई है। वो काउंसलिंग कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस कैंपस के अंदर ही होगी और 26 तारीख को होगी और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुली रहेगी। तो स्टूडेंट आएगा खुद और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग और वेरिफिकेशन इन पर्सन उसको करवानी होती है। ऐसे नहीं सोचना है कि कोई पेरेंट्स आ गए या कोई और रिश्तेदार आ गया या बच्चा नहीं आया, तो टाइम से पहुंचना है और खुद आना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप जो है क्लासेस सेप्टेम्बर से शुरू हो जाएंगी। तो मैंने जैसे बताया कि NEP बेस्ड है, इसमें स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी हैं, इसमें एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कोर्सेज भी हैं और साथ में कुछ कॉमन कोर्सेज हैं और जो हमारे रेगुलर कोर कोर्सेज हैं वो रहते हैं। और एक बड़ी बात है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब कार्यक्रम चल रहा है, तो कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि अभी एक साल उसने एडमिशन ले लिया तो एक साल के बाद उसको ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेक लेनी है या कुछ करना है, या कोई हेल्थ रीज़न हो सकता है, किसी भी कारण से अगर वो स्टडीज़ को छोड़ना चाहता है, तो 10 हफ्ते की इंटर्नशिप उसको करवाई जाती है और उसको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक, ठीक है। तो अगर एक बच्चा एक साल में करा और एक साल के बाद सर्टिफिकेट कोर्स लेकर चला गया तो वो वापस भी आ सकता है। नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान है कि आप पढ़ाई को बीच में डिसकंटिन्यू करके फिर वापस अपना कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई स्टूडेंट ऐसे भी लगता है कि 2 साल किया उसने और उसके बाद उसकी पढ़ने की रुचि नहीं है या कुछ और करने का मन है या कुछ और रीज़न है, तब भी डिप्लोमा जो है वो लेकर कम्युनिटी साइंस में वो बच्चा जो है वो जा सकता है और फिर बाद में वो अपनी स्टडी को वापस कंटिन्यू भी कर सकता है। 1-2 साल की ब्रेक के बाद वो वापस आ सकता है, उसको एडमिशन मिल सकता है। तो इस तरह के प्रावधान भी इस प्रोग्राम में दिए गए हैं।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी ने बखूबी जाना कि किस तरह से इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बहुत ही खास जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने जानी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी, बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुँचाइए दोस्तों। तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ। फिलहाल अभी समय है समाचारों का, तो जरूर सुनिए समाचार और उसके बाद फिर से रेडियो गुंजन धर्मशाला का ये मनोरंजन का सिलसिला इसी तरह से एंजॉय करते रहिए।
2: उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

0: ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ।
1: ਹਾਏ
2: दोस्तों, पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा

0: तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Yeah.

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। जी दोस्तों, आप सभी को वैसे तो इस समय इंतज़ार होता है पहाड़ी जो कार्यक्रम है आपकी फरमाइशी। फिलहाल आज जो है बहुत ही खास मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप सभी के लिए एक बहुत ही खास बातचीत जो है हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जी तो आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अनुपमा संधल मैम का हमारी इस खास बातचीत में।
1: धन्यवाद
0: जी। तो सबसे पहले मैम, हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बताइए कि आप जो है इस समय कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कौन से जो है मतलब कि कॉलेज में किस तरह से आप बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा संधल चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, वहाँ पर कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर मैं मुख्य प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में दो प्रोग्राम चलते हैं, जिनमें से एक होता है BSc कम्युनिटी साइंस और एक होता है BTech फूड टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी, वो अपनी जो BTech फूड टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं, जो डिग्री चलती है BTech फूड टेक्नोलॉजी की, उनको पढ़ाते हैं हम लोग। और साथ ही हमारे विभाग में जो बच्चे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस से BSc कम्युनिटी साइंस करते हैं, उन बच्चों को MSc और PhD की डिग्री भी प्रदान की जाती है।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी ने जाना कि मैम जो है किस तरह से अपने जो है योगदान दे रहे हैं और किस कहाँ पे कार्यरत हैं। तो आज की जो ये खास बातचीत है दोस्तों बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है 12th के बाद जो है कोर्सेज को डिसाइड करना, चॉइसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में जब हमें एक बेहतर चॉइस या गाइडेंस जब हमें मिल जाती है तो हमें चूज़ करना ईजी हो जाता है। तो जब हम हर कहीं की इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, यहाँ से भी वहाँ से भी हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो हम अपने टैलेंट को हम अपने में झांकते हैं कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में बेहतर कर सकते हैं और कौन सी फील्ड हमें जो है आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहेगी। तो ये बातचीत जो है हमारी फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ी रहने वाली है दोस्तों। तो फूड नाम तो हमने बहुत सुना है खाने का, तो सिर्फ खाने तक सीमित हमें नहीं रहना है, उसकी बारीकियों तक जाना है। तो उसको जानने के लिए हमारे लिए कुछ कोर्सेज जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो उसी से जुड़ी बातचीत जो है अनुपमा मैम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। तो मैम सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को यही बताइए कि ये फूड टेक्नोलॉजी होती क्या है।
1: फूड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि खाद्य प्रौद्योगिकी
0: जी।
1: इसमें खाद्य प्रौद्योगिकी BTech फूड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है ये। तो BTech फूड टेक्नोलॉजी में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका एक तो फील्ड होना चाहिए, उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो साइंस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। PCM हो, PCB हो या कई बहुत सारी जगहों पे PC के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोटेक्नोलॉजी भी है, और जितने भी हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो BTech फूड टेक्नोलॉजी दी जाती है वहाँ पर PCA यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जो प्लस टू तक जिन बच्चों के पास एग्रीकल्चर होता है वो भी एलिजिबल होते हैं। तो हम आज जैसे बात करना चाहेंगे, जैसे हमारा कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो स्थित है, यहाँ पर BTech फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री है। तो यहाँ पर इस वर्ष जिन बच्चों ने CUET UG की जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा दी होगी वो बच्चे, और जिनका प्लस टू में जो विषय रहा हो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये बच्चे जिन्होंने CUET UG का 2026 का एग्ज़ाम दिया हो वो लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए उन बच्चों को जो बच्चे इच्छुक हैं उनको ये है कि उनको हमारे कृषि विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है hillagric.ac.in वहाँ पर उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, दूसरे नंबर पर है जहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड ऑप्शन आता है, उसमें एंट्रेंस टेस्ट में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसके साथ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आता है, सीयूईटी यूजी 2026 जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो उस हिसाब से उन बच्चों को ऑनलाइन ही वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उससे पहले अपना सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सीयूईटी का उनका जो एडमिट कार्ड होगा उसकी स्कैन कॉपी करके रखें, सीयूईटी का जो उनका स्कोर कार्ड आया होगा वो स्कोर कार्ड भी रखेंगे, जो भी चीज़ वहाँ पर अपलोड करने के लिए, जो जैसे जैसे वो आगे फॉर्म भरते जाएंगे उनको वो चीज़ें अपलोड करनी होंगी या उसकी जानकारी देनी होगी उसमें। तो उसके हिसाब से उन बच्चों को उस हमारी वेबसाइट पे जाके उनको अपने फॉर्म को भरना शुरू करना पड़ेगा। तो ये हमारी वेबसाइट पर आजकल ये ब्लिंक कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो एडमिशन नोटिस जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पे ब्लिंक

0: क्लिक करेंगे बच्चे तो एडमिशन जो साइट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो बच्चे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए इच्छुक हैं वो उनको ये 10 अगस्त तक लास्ट डेट है। 10 अगस्त को 11:49 जो है 11:59 PM रात्रि तक इसका समय है, तो वहाँ पर बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो वो फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन या हार्ड कॉपी कोई भी नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा एक्टिवेट होके या तो अपने घर पे किसी बड़े की मदद से या कोई जानकार हो उसके साथ या फिर साइबर कैफे में जाके बच्चे फॉर्म भर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, तो आप सभी ने जाना कि किस तरह से इसका जो है प्रोसेस रहता है और फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है। और भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस खास बातचीत के साथ, खास जानकारी के साथ।

0: तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और आज की बहुत ही खास कार्यक्रम में बहुत ही खास बातचीत आप सभी एंजॉय कर रहे हैं हमारे खास मेहमान के साथ। जी दोस्तों, डॉक्टर अनुपन माफ करना डॉक्टर अनुपमा संधल मैम जो हैं आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं और फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैम, जैसे कि अभी हमने जाना कि किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है, और एक बात मैं अपने दोस्तों को और भी ये भी बताना चाहूँगी कि अभी आपने जो जिक्र किया कि इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट रहता है तो वो कब लिया जाता है, वो भी हमारे दोस्तों को बता दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो उसके लिए अवेयर रहें या कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकें।
1: ये मार्च अप्रैल के महीने में NTA कंडक्ट कराता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG प्रोग्राम के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, तो वो जो है बच्चों को फॉर्म भरना पड़ता है और उसका टेस्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट्स आपने प्लस टू में लिए हैं उनमें आपको वो CUET का टेस्ट देना होता है। तो उसमें जो मार्क्स आते हैं उसके स्कोर कार्ड के हिसाब से, फिर जैसा भी होता है मैं उसके स्कोर कार्ड के हिसाब से मेरिट बनती है और फिर वो एडमिशन ली जाती है।
0: जी, तो मैम इसके लिए अगर हम बात करें कि जो ये एंट्रेंस टेस्ट होता है तो इसमें मेरिट बेस्ड रहती है या फिर ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल रहते हैं?
1: जैसे कि हमारे यहाँ चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में दो तरीके की सीट्स हैं, एक HP बोनाफाइड के लिए होती है और एक होती है HP नॉन बोनाफाइड, जो बोनाफाइड बच्चे नहीं हैं। तो जो HP बोनाफाइड होते हैं उनका तो ये होता है कि जो उनकी 10th है और प्लस टू और यहाँ के बोनाफाइड रेजिडेंट होने चाहिए HP के। और जो HP नॉन बोनाफाइड बच्चे होते हैं, दूसरे स्टेट से जो बच्चे आते हैं, वो SFS स्कीम में आ सकते हैं, जिसमें कि जो नॉर्मल फीस होती है उससे थोड़ा ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। तो वो फीस जो होती है जो दूसरे राज्यों से जो बच्चे आते हैं वो पे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो SFS कैटेगरी उनको बोला जाता है क्योंकि उनकी फीस ज़्यादा होती है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने जाना कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कब कंडक्ट जो है वो कराया जाता है, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ बढ़ते हैं, कर रहे हैं मैम कोर्स की, तो इसमें किस चीज़ पे जो है फोकस किया जाता है, मतलब क्या क्या इसके अंडर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से इस कोर्स का जो है प्रोसीजर रहता है?
1: जी, BTech फूड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम जो है 4 वर्ष का प्रोग्राम, 4 वर्ष का कार्यकाल, 4 वर्ष का प्रोग्राम है और UG इंजीनियरिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेन फोकस होता है जैसे फूड प्रोसेसिंग, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी भोज्य, जो भी खाना है, जैसे अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है, जो भी खाने की चीज़ें हैं उनको प्रोसेसिंग, उनका प्रसंस्करण किस तरीके से किया जाए कि वो खाने योग्य बन जाए, या उसको और नई तरीके से किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाए कि उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पौष्टिकता ले सकें, उसको हम जहाँ पर वो चीज़ उगती है, जैसे जहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन होती है वहाँ से वो उपभोक्ता तक सही सलामत किस तरीके से पहुँचे, तो वो काम होता है प्रसंस्करण का, फूड प्रोसेसिंग का काम होता है। दूसरा उसमें जो फील्ड होता है या जो महारत हासिल होती है वो होती है फूड प्रिजर्वेशन, जब हम खाद्यान्न को, फसलों को हम नुकसान होने से बचाते हैं, नुकसान मतलब जब तुड़ाई के उपरांत जो भी है उसको हम किस तरीके से उसको हम किसी एक वैल्यूएबल पदार्थ में उसको कन्वर्ट करें, चाहे हम उसको जैसे कि गेहूं जो एक खड़ी फसल है, जब वो उसको काटा जाता है तो काटना जो है, काटने के बाद आटा बनने तक, रोटी बनने तक, ब्रेड बनने तक जो अलग अलग स्टेप आते हैं वो होते हैं फूड प्रोसेसिंग, जो कि हम प्रसंस्करण बोलते हैं। उसके बाद होता है प्रिजर्वेशन, जब आप इसको लंबे समय तक रखना चाहें तो किस तरीके से हम क्या, जैसे हम थैलियों बैग्स में आटा मिलता है वो एक फूड प्रिजर्वेशन का हिस्सा है
0: जी।
1: उसके अलावा फूड सेफ्टी, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो क्योंकि आज का जो दौर है बहुत तेज़ी से ज़िंदगी भाग रही है, लोगों के सभी लोग कार्य करने के लिए सक्षम है, सभी लोग अपने आप को, सभी लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारे पास अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो लोग खाना बनाने में इतना टाइम डिवोट कर सके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाफ़ कुक्ड, प्री कुक्ड या रेडी टू कुक इस तरीके की, या रेडी टू यूज़, रेडी टू ईट चीज़ें जो हैं, इस तरीके की चीज़ें हमारे को बाज़ार में उपलब्ध हैं। लेकिन हमें ये साथ में ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हम खाएं, या जो भी लोग खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, वो सुरक्षित भी हैं उनके लिए कि नहीं है, कोई उसमें इतना नुकसान तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जैसे प्रिजर्वेटिव हैं या कोई भी और भी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, तो उनका तो आप उनके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है। इनका जो, इनके बारे में उन बच्चों को जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उनको उनको बताया जाता है। इसके साथ साथ पैकेजिंग, आजकल पैकेजिंग पे, क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, जो भी उत्पाद बनता है, उसको मार्केट में आप कैसे उतार रहे हैं, और जो पैकेट है उसका वो कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उपभोक्ता को, वो बहुत ज़रूरी है। तो पैकेजिंग पे भी बहुत काफ़ी पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को जानकारी दी जा सकती है। और जो इसके, इस बीटेक फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में जो बच्चे हैं, जो जो विद्यार्थी आते हैं, वो पढ़ते हैं जो फूड, मतलब इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स, तो दो तरीके के जो विषय हैं उनका समावेश होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो आधारित होते हैं, जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी पे, फूड केमिस्ट्री पे, बायोकेमिस्ट्री पे, फूड आपका प्लांट लेआउट डिज़ाइन के ऊपर, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर, इसके साथ साथ मैनेजमेंट के भी कुछ कोर्स होते हैं, जैसे क्योंकि और इसके साथ साथ बच्चों का एक सेमेस्टर का जो कंपलसरी इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप या जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है, तो इंडस्ट्री बच्चों की अपने इच्छा के अनुसार या तो वो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, या किसी एनालिटिकल लैब में भी, जिन बच्चों का अगर से रुचि है एनालिसिस में, तो वो किसी लैब के साथ भी अटैच होके एक सेमेस्टर के लिए, आखिरी जो सेमेस्टर होता है उसमें वो अपना वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। तो इस तरीके के कोर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं इसमें, जब अगर आगे, जैसे आजकल स्टार्टअप का कल्चर है, तो मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो कोर्स है उससे स्टार्टअप कल्चर को भी, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी जो विद्यार्थी हैं, वो सबमिट करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से जाना, मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जो है फूड टेक्नोलॉजी कोर्स जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है आज के इस भागदौड़ के समय में, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं कि सिर्फ खाना खाना है, खाया खाया, नहीं भी खाया, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, हमें खाने की बारीकियाँ भी जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह का खाना हम खा रहे हैं या किस तरह से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल, और भी हम मैम से जानेंगे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही खास कार्यक्रम आज के इस खास दिन के साथ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी आज का दिन जो है आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे। जी दोस्तों, तो एक महिला के लिए अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में हम आज इतनी खास बातचीत आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे से कोर्सेज जिसके साथ जो है चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कोई भी हों, अपने टैलेंट को निखार सकते हैं इन कोर्सेज की हेल्प से, और अपनी एक जो है अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज पहले आपने डॉक्टर अंजलि सूद मैम के साथ बहुत ही खास जानकारी जो है वो सुनी, और अभी डॉक्टर अनुपमा संधल मैम के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस बहुत ही खास बातचीत में आगे की ओर। तो मैम, जैसे हम फूड टेक्नोलॉजी कोर्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी जो है फील्ड हम आगे बढ़े, बच्चों की हम बात करें, क्योंकि आजकल के युवाओं में आपने देखा कि एक अलग ही क्रेज़ है, और जहाँ भी जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही टेंशन होती है कि उनका उससे करियर में किस तरह से हेल्प हो पाएगी, जॉब से रिलेटेड वो कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो बना सकते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी जो है युवाओं को किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, जॉब से रिलेटेड करियर से रिलेटेड जो है वो अपने आप को कैसे हेल्पफुल इसमें फील कर सकते हैं?
1: जी, जो आज जैसे हमने अभी बात करी थी कि फूड जो इंडस्ट्रीज़ हैं सबसे फास्ट ग्रो कर रही हैं, इनको हम FMCG

0: इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज।
1: जी
0: इसमें आए मतलब आने आए दिन जो नए प्रोडक्ट्स भी बाजार में आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन भी बहुत हो रही है, तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो इसमें जो बच्चे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करते हैं उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस रह जाती है हो जाती हैं। जैसे कि जैसे हम प्राइवेट जॉब्स में बात करें तो बच्चे जो हैं जो विद्यार्थी हैं अपने डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसे फाइनल ईयर में लास्ट सेमेस्टर 8वां सेमेस्टर जो होता है वो उनका इंडस्ट्री में या किसी एनालिटिकल लैब में बच्चे अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज जहाँ पर स्टूडेंट्स काम करते हैं वो लोग इनको प्लेसमेंट दे देते हैं वहीं पर उसी इंडस्ट्रीज़ में। तो वो वहाँ पर एज फूड टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स या प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स इस तरीके से, या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में भी जो बच्चे हैं हायर डिग्री अर्न करने के बाद वहाँ पर एज साइंटिस्ट भी, जैसे निफ्टेम है, निफ्टेम सोनीपत है, निफ्टेम तंजावुर है, और बहुत मेहनत का जो बच्चे करते हैं जैसे CFTRI है मैसूर, वहाँ पर भी बच्चों की प्लेसमेंट होती है। तो बीटेक के बाद जो बच्चे हैं, बीटेक के बाद जो जो निकलते हैं विद्यार्थी वो ज़्यादातर जो है फूड इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो और जो इंडिया में हमारे भारतवर्ष में जो फेमस जो मशहूर FMCG इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं जैसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड है,
1: जी
0: कोका कोला है, देन आपका ये है प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर है, ये उसके बाद आपका ITC है। ये इन सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं आजकल जो विद्यार्थीगण हैं वो काफ़ी सारे पतंजलि जो उद्योग है उसमें बहुत सारे क्वालिटी अलग अलग हैसियत में, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के R&D विंग जिसको बोलते हैं जहाँ पर नया प्रोडक्ट बनाने का उनको मौका मिलता है, या उस फील्ड में वो काम करते हैं, फिर क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं जो प्रोडक्ट बनता है और जो रॉ मटेरियल जैसे आता है उसकी क्वालिटी इवेलुएट होती है लैब में प्रोडक्ट बनने से पहले। इसके अलावा फूड पैकेजिंग सेक्टर जो है, फूड पैकेजिंग सेक्टर में भी आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जा रहे हैं, और क्योंकि नई नई फूड पैकेजिंग, क्योंकि अभी पीछे हमने काफ़ी समय देखा कि जब इजी पैकेजिंग आई उसमें प्लास्टिक काफ़ी हमारे जैसे जीवन में घुस गया,
1: जी
0: तो अब हमें पता लग रहा है कि प्लास्टिक नुकसानदेह भी बहुत है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। तो और लेकिन वो स्टेबल भी होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट को ख़राब करने वाला नहीं होना। तो ये सारे एरियाज़ हैं, ये सारे फील्ड हैं जहाँ पर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बाद बच्चे जाते हैं और अपना कार्य भी करते हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पर देते हैं और आगे तरक्की भी करते हैं, जो अलग अपनी रुचि के अनुसार जो भी होता है अपना वहाँ पर प्रोग्रेस करते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: और इन इंडस्ट्रीज़ में जो शुरू में पैकेज है, जो एज अ फ्रेशर हम कह सकते हैं कि 2-2.5 लाख से लेके 4.5 लाख प्रति मतलब सालाना रूप से आए हैं जो इतना तक लेते हैं, क्यों और धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी उसमें तरक्की करते हैं और आगे का पैकेज लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि MBA की लाइन बाद में PG करने के लिए MBA की तरफ और M.Tech की तरफ जा, तो जितना M.Tech और PhD की तरफ जाते हैं उतना वो साइंटिफिक लाइन में चल जाते हैं, और जब मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो वो MBA करके अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं।
1: जी तो मैम, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो इंटर्नशिप लास्ट सेमेस्टर जो रहता है
0: जी
1: वो इंटर्नशिप का रहता है जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में करवाई जाती है,
0: जी
1: तो ये जो इंटर्नशिप बच्चों के लिए रहती है तो ये मतलब कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ जो है थोड़ा सा सूटेबल रहता है, या कॉलेज की तरफ से ही उन्हें जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो मेंशन किए जाते हैं।
0: 3 साढ़े 3 साल तक बच्चे हमारे पास ही पढ़ते हैं, तो
1: जी
0: उसके बाद क्या होता है कि बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल और उनकी जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी जो रुचि होती है उसके हिसाब से हम और बच्चों का बायोडाटा रिज्यूम बनवा के हम इंडस्ट्रीज़ को भेजते हैं। तो जहाँ से एक्सेप्टेंस आती जाती है वहाँ पर उन बच्चों को भेजा जाता है। तो ज़्यादा हमारे यहाँ से चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय से बच्चे ITC में बहुत बच्चे जाते हैं, कैडबरीज में जाते हैं, नेस्ले में जाते हैं, अमूल में भी बहुत बच्चे जाते हैं, फिर हल्दीराम के जो कंपनीज हैं उसमें जाते हैं। और आजकल बच्चे जो हैं बड़े अच्छे अच्छे फूड बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं जो नेशनल लेवल पे चल रहे हैं वहाँ पर भी, जैसे RT कॉम्बुचा है, RTM बेवरेजेस, इन सब में भी बच्चे अपना एज इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस भी होता है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वहीं पर PO ले लेते हैं, मीन्स कि जब उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है यहाँ पर उनकी ग्रेडिंग वगैरह होती है और उसके बाद वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से वो होता है कि आगे की पढ़ाई के लिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है उनका।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ही खास बातें जो हैं आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए बहुत खास होती है, बहुत ज़रूरी होती है, अगर हम थोड़ा सा भी उन्हें नज़रअंदाज करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि युवा जो हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे युवा हैं, वो रास्ते से भटकते हुए जो है कहीं नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है हमें स्किल्स पे काम करना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज जो कि बच्चों को वर्डन भी ना लगे, क्योंकि खाने की बात है तो खाने के लिए तो हर कोई शौकीन होता ही है, तो वैसे वो अपना टैलेंट भी पूरा निखार सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स को बस इस और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चों के इंटरेस्ट को जानने की ज़रूरत है, उन्हें कॉपरेट करने की जरूरत है। तो बिल्कुल, और भी हम मैम से बातचीत करेंगे और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर से जुड़ते हैं आप सभी के साथ 91.2 MHz पर।

0: बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों के साथ। और आज का ये बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और डॉक्टर अनुपमा संधल जी के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को और आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो मैम, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चे किस तरह से इस कोर्स के माध्यम से जो है अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, तो वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के
1: जी,
0: तो उसमें भी बच्चों के लिए इस कोर्स के माध्यम से कोई ऑप्शंस रहते हैं या किस तरह से जो है उसमें भी कोई मतलब इनके लिए प्रावधान है?
1: जी, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज, जितनी भी हमारी फूड इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर बच्चे कभी प्रोडक्शन यूनिट में और एनालिटिकल लैब्स में और उनके जो मैनेजमेंट्स हैं उनमें बच्चे कार्यरत होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी बच्चे जो हैं, जैसे हमारे जितने भी FSSAI के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर फूड क्वालिटी एनालिस्ट हैं, एग्ज़ाम होता है उनका, एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं पोस्ट की, तो फूड क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं उसके लिए वो एग्ज़ाम करते हैं और क्वालिफाई करके वो लोग वहाँ पर लगते हैं। इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर जो होता है, जो हमारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को चेक करते हैं, फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और हमारे इसके अलावा जो फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, खासकर जो बच्चे जो हैं वो जितने हमारे जो मिल्क फेड वगैरह हैं, जो उसमें भी जो हमारे जो पास आउट होते हैं हमारे यहाँ से बच्चे, वहाँ पर लग सकते हैं। और जैसे भी उनकी पोस्ट की एडवर्टीज़मेंट आती है तब। इसके अलावा जो क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स हैं बहुत सारी, FSSAI की भी हैं और दूसरी NABL एक्रेडिटेड लैब्स भी हैं, वहाँ पर भी फूड एनालिस्ट की पोस्ट होती हैं, तो वहाँ पर ये जो पास आउट बच्चे हैं वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं जैसी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि प्राइवेट सेक्टर में भी किस तरह से जो है बच्चे अपने करियर के लिए आगे बढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैम हम बात करें कि अभी जो भी सुन रहे हैं इस समय, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो बच्चे हों, अगर उन्हें लग रहा होगा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कोर्स है ये, और शायद उनका इंटरेस्ट भी बन रहा हो
1: जी,
0: है ना, फूड टेक्नोलॉजी की ओर, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है बहुत से बच्चों के मन में या पेरेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि इतना अच्छा जो है कोर्स है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, तो उसके लिए फीस का किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, क्या हम उसे अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो आप हमारे दोस्तों को ये भी बताइए कि इसका फीस स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, किस तरह से जो है बच्चों के लिए ये बनाया गया है।
1: जी मैम, जैसे हमने शुरू में ही बात करी थी कि जिन बच्चों ने इस वर्ष एडमिशन लेना है उनको CUET 2026 दिया होना चाहिए, CUET UG, तो उन बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी है जिनके पास प्लस टू में PCM, PCB, PCA और एक कोर सब्जेक्ट साथ में रहेगा इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है। तो उनका जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड के हिसाब से उनकी लिस्ट बनती है। तो जो हमारी जो एडमिशन फी, एडमिशन तो नहीं कह सकते, प्रॉस्पेक्टस जो फीस है वो है, जैसे HP बोनाफाइड अगर स्टूडेंट हैं तो उनकी है ₹1,000, और जो HP जो रिज़र्व कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस है 700, जो एप्लीकेशन फ़ी जिसको प्रॉस्पेक्टस फ़ीस कहेंगे। और जो बच्चे बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, हिमाचल के बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है ₹2,000, तो उस सबमिट कर देंगे और उसके बाद जब फॉर्म उनका सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन, और फिर उसके बाद जब सारे फॉर्म सबमिट हो जाएंगे तो वो रेगुलर इन टच रहें हमारी वेबसाइट के, क्योंकि अभी हमने उसमें काउंसलिंग की और रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं है उस प्रॉस्पेक्टस में। तो जब ये बच्चों की काउंसलिंग की डेट होगी वही उसी दिन वहाँ पर सिलेक्शन होके रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो जो हिमाचल बोनाफाइड है, जो जिसमें जनरल बच्चे आते हैं, और उनकी फ़ीस रहेगी 34,578 रुपये।
0: परियर या
1: ये अभी एडमिशन फीस है,
0: एडमिशन
1: फीस है जी। और मतलब एडमिशन प्लस इस सेमेस्टर की फीस रहेगी है
0: जी।
1: और जो एसएफएस में बच्चे हैं, जो जिन हिमाचल से भी जिन बच्चों ने एसएफएस कैटेगरी भरी है, और जो बच्चे बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं वो एसएफएस में ही आएंगे, तो उनकी फीस रहेगी 84,578 रुपये। तो ये इस सेमेस्टर में उनको डिपॉजिट करनी है, फिर बाद में तो सिर्फ ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस और जो भी स्टूडेंट्स की जो भी फीस होती है वो होती है। तो जो एसएफएस और नॉन एफएसएस एसएफएस में है उसमें 50,000 रुपये का अंतर है
0: जी।
1: इसके अलावा जो बीपीएल गर्ल्स की सीट है, बीपीएल की सीट है, जो नॉन एसएफएस है वो एडमिशन के टाइम उनको जो फीस देनी है 21,578 रुपये है। और जो एसएफएस में बीपीएल गर्ल्स अप्लाई करना चाहते हैं उनका है 71,078 रुपये, 71,078 रुपये। तो ये मतलब तैयार होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन काउंसलिंग होती है हमारी रजिस्ट्रेशन उसी दिन कर दी जाती है, एडमिशन कंफर्म हो जाती है, उसके बाद सिर्फ लिस्ट ही लगनी होती है
0: जी।
1: तो ये सारी जो जानकारी है, क्योंकि जो डेट ऑफ काउंसलिंग होगी वही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई और डेट नहीं आएगी, उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आएगा
0: जी। बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से फूड टेक्नोलॉजी कोर्स का जो है फी स्ट्रक्चर रहता है। तो मैम अब मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि जैसे आज के युवाओं की हम बात करें या हम अपनी बात करें, तो हमारा ज़्यादा शौक यही रहता है कि बस खाना खाना है, लेकिन उसके पीछे की बारीकियाँ जानने का इतना हम ध्यान में नहीं देते हैं, और जहाँ तक देखा जाए तो फास्ट फूड की ओर हम बहुत ज़्यादा जाते हैं
1: जी।
0: तो आपको जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो आपको कितना टाइम हो गया है अपनी जो ये सेवाएं देते हुए, और किस तरह से आपने बच्चों का एक्सपीरियंस देखा है, उनका रुझान जो है पहले और अब में जो डिफरेंस आपको कुछ नज़र आया होगा तो वो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए
1: जी। मुझे तो इस क्षेत्र में कार्य करते हुए 32 साल से ज़्यादा हो गए
0: जी,
1: ऑलमोस्ट 40 साल हो चुके हैं। इसमें ये ऐसे है कि बीच में एक दौर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आया था, जिस समय बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स की तरफ था। फास्ट फूड लेने में दिक्कत ये है कि ये ये एक रिफाइंड फूड है, ये हमें सिर्फ एक ऊर्जा एनर्जी ही प्रदान करते हैं और कोई बाकी आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे शरीर की ये आवश्यकता है कि बाकी के न्यूट्रिएंट भी हमें रोज ही मिलने चाहिए, जैसे प्रोटीन है, वसा है, खनिज है और विटामिन्स हैं। तो जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें एक तो एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं ना, एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है कि सिर्फ ऊर्जा प्रदान करते हैं और कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा। प्लस इसके साथ साथ एक नुकसान ये होता है कि इस क्योंकि हर चीज़ को हमने जो भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं वो प्रिजर्व करके किसी न किसी तरीके से उसकी शेल्फ लाइफ या उसको थोड़ा लंबे समय तक रखने के लिए हमने उसको बनाया है, तो उसमें क्या होता है कि या तो चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी या नमक की मात्रा ज़्यादा होगी या वसा की मात्रा, तेल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो और जब हम जैसे फ्राई करते हैं आप चीज़ें, तो फ्राई करोगे तो उसमें ट्रांस फैट्स बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में ट्रांस फैट्स की कोई जगह नहीं है। तो ट्रांस फैट्स जो हैं हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से, 3-4 वर्षों से, जब से 2023 में मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ईयर आया था, और उसके बाद और भी, क्योंकि आजकल युवा भी थोड़ा फिटनेस की तरफ थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, ये हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी हमारे रेडियो कार्यक्रम होते हैं और ये दूरदर्शन के कार्यक्रम या दूसरे भी हमारे चैनल्स होते हैं, तो उसमें बच्चे अब थोड़ा जागरूक भी हो रहे हैं कि हमको कितना खाना चाहिए और किस तरीके का खाना खाना चाहिए। तो थोड़ा सा बदलाव अभी आजकल देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा हेल्दी खाने की तरफ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हेल्दी खाना भी वो एक रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फॉर्म में ही ढूंढते हैं, ये उनका मतलब रिक्वायरमेंट है। वो अपनी जगह वो भी सही है कि भाई उनके पास समय नहीं है और नॉलेज भी उतना नहीं रहता है ना। अब जैसे मान लो कि ओट्स है, ओट्स से ही उपमा बनाना है या ओट्स से ही कुछ बनाना है तो उसमें जल्दी पकने वाला होगा तो वो उसको लेंगे,
0: उसको लेंगे।
1: और जो टाइम लगाएगा उसको नहीं ले पाएंगे। तो अब थोड़ा सा डाइवर्जन तो है, और फलों की कंजम्पशन अब यंग युवाओं में बढ़ रही है, सब्जियां उन लोगों ने खानी शुरू कर दी हैं। ये मतलब हम आजकल देख रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों में थोड़ा सा बदलाव आना
0: शुरू हुआ है
1: और लोग अपने को आपको हेल्दी रखने की सोच रहे हैं।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए कितनी बहुत ही ज़रूरी सी बात है ये, और जागरूकता की बात है, तो ये हम सभी में होनी बेहद ज़रूरी है। अगर हम बच्चों के जो है ज़िंदगी को एक स्टेबलाइज करना चाहते हैं, एक सुरक्षित वे में उन्हें आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का। इसी के साथ ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बातचीत के साथ।

0: 101.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही खास ये कार्यक्रम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का आप सभी एंजॉय कर रहे थे जी दोस्तों। और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर अनुपमा संधल मैम जी जुड़े थे एक खास जानकारी के साथ। तो आइए दोस्तों, धीरे धीरे समय जो है वो आप सभी से दूर जाने का होने को है, तो बिल्कुल जाते जाते मैम आप क्या मैसेज जो है हमारे दोस्तों तक पहुँचाना चाहेंगे?
1: जी जरूर, मैं यही कहना चाहूँगी कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, और जो बच्चे साइंस में रुचि रखते हों और थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग की रुचि हो वो इस फील्ड में आ सकते हैं, और बहुत फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। तो हमारे यहाँ चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम चलता है। वहाँ पर बच्चे हमारी वेबसाइट illagric.ac.in पर जाकर एडमिशन में जाकर क्लिक करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और हम अच्छे स्टूडेंट्स का हम इंतज़ार हमेशा से ही रहता है। और इसके अलावा अगर से जो किसी को कोई जानकारी लेना हो तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी श्रोतागण नोट कर सकते हैं, 01894 ये कोड है, और नंबर है 230394, और दूसरा नंबर है 230351। और इसके अलावा अगर कोई मेल करके कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं contactpetcskhpkv@gmail.com। तो हमें हमारे आने वाले विद्यार्थियों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार
0: जी दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए। जी दोस्तों, तो आप अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को दीजिए अनुमति इस बहुत ही खास जानकारी के साथ। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिर कर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
6: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर, वो

0: ये देख डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
1: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
0: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
2: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
3: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
4: ओह नो,
5: 30,000 का?
3: हाँ
5: ले दो।
3: सच्ची?
5: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
3: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
5: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
3: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
5: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
3: Ha ha ha!

कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले, तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Oh!

नमस्ते नमस्कार सभीओ मेरा प्यार भरा नमस्ते। हाँ हूँ सचिन कपूर हाजिर बुआ कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन। कैसे तो है सब? उम्मीद करनो तो सब ठीक बुणे खरे बुणे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भूणे हिन। और हमेशा बोलो कि तुम्हारा सभीओ पहला दोस्त गया सो तुम्हारा अपना शरीर है। और अपने शरीर जो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखने वास्ते बिल्कुल वर्कआउट तो करना ही चाहता सो तो और जरूर करू करा है ना। चलिए जी, वर्कआउट भी जरूरी है लाइफ में। और पिटारा आंसू गीता रह गया जरूर खोलना। आइए जी सभी पहले आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रा। पिटारे थो गीत कटी लेंदेन और हुनंदेन तुसुओ ये गीत।

बहुत प्यारे दे गीत श्रोतों। और चलिए अब कार्यक्रम मंच असु गल करनी है आज श्रोतों एजुकेशन रे बारे में। जी बिल्कुल, आजकल जो खास करीन दे बच्चे न जो कि फोन रा बड़ा बड़े क्रेज है और जहने लॉकडाउन लग रो थो श्रोतों तहने ऑनलाइन क्लास अगेन सो लगना शुरू हुए तथों बाद किया सो बच्चे का ज्यादा ही क्रेज किया सो फोन नो लेकर ही भुजगो बच्चे ज्यादा ही फोन जो लेकर ही कहन सो बड़े सीरियस नजर इंदे न मतलब कि बस तिन्यो फोन चिंदा खंदे फोन उड़दे फोन सुनदे फोन और फोना मंज एजुकेशन किया सो चलो तहने तब हालात ऐसे थी कि करना पे लेकिन आज हालात ठीक नींद है। आज भी बच्चे कहन श्रोतों सो एजुकेशन री किनारी ध्यान ना करी करी किया सो फोन की किनारी ध्यान कर दें ताज असू इस टॉपिक में जानना इस कार्यक्रम में जानना कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है असू वास्ते। आइए श्रोतों बिचा बिचा असू गीतारा पिटारा गया सो भी खुलता है रहना है हुन दे ने गीत।

FM 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपने का पगन सो इस वक्त बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वीडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा आइए श्रोत कार्यक्रम जो है अभिनंदन और हेरा शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण खासकर युवा वास्ते बच्चे वास्ते और असु वास्ते भी बोलना चाहूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई री कोई उम्र ना होंगे जस उम्री है तो लगा के असु शिक्षा के असु ग्रहण करना चाहते हैं या हगू पढ़ना चाहता तो सो तुहे कंटिन्यू कर सकते हैं शो शिक्षा के असो इम्पोर्टेंट भी है असु सभी वास्ते शो तो है ना एक ज्ञान कौशल और सही सोच के असो प्रदान कर दिया शो तो जस तो व्यक्ति जो बेहतर नौकरी व अवसर भी मिलता है फैसला लेने में क्षमता बढ़ती है व्यक्ति री तुसु कोई भी फैसला लेना था तुंदी जो क्षमता सो बड़ी गाने हाँ शो तो है ना तुंदी दायरा किया सो बड़ी गाना हाँ और समाज में सक्रिय भूमिका किया सो भी एजुकेशन निबंधी हाँ शो तो आइए कार्यक्रम मंच एंजॉय कर दें ये गीत

सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और कार्यक्रम मंच तो सब बन रहे बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन के फिर सभी होने आए रहा आइए सो तुम कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगू लेकर ही चल देन और कार्यक्रम मंच गल बात चल रही आज एजुकेशन जो लेकर शिक्षा जो लेकर शिक्षा के स्वतों सो अंधविश्वास और भेदभाव जो खत्म कर दे जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधविश्वास में भी बहुत सारे मनो के अनुसोर भेदभाव में भी जाति जो लेकर के अनुसो भी आज रेट में बड़े सारे मनु के सुरेंद्र ने जाए सो यूथ ही को ना वो है ना सुरेंद्र हा एजुकेशन इन चीजों भी खत्म कर दिया नागरिक जो त्यारे अधिकार रे प्रति किया सो जागरूक कर दिया त्यारे कर्तव्य रे प्रति किया सो नागरिक जो आम नागरिक जो किया सो जागरूक कर दिया शिक्षा शुभ और राष्ट्र रे आर्थिक विकास मा भी किया सो योगदान कर दिया सो हा शिक्षा शुभ देविलिया एजुकेशन कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट आसो सभी वास्ते अभी जो बच्चे और जो युवा सोचते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है नौकरियां लगेगा नहीं आई है बुझगाना नौकरी बेशक लग गया लेकिन एजुकेशन के शो तो सो कंटिन्यू करना चाहते हैं बड़ा विकास बुंदा अपना समाज रा भी बुंदा अपना भी बुंदा परिवार रा भी बुंदा है शो तो कार्यक्रम जो हगू लेके चल देन खोल देन पिटारा कोड और हुनन देन ए प्यारा दे गीत सुनो।

रहूं सचिन कपूर हा। व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा रा महत्व शतो ज्ञान और कौशल, शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करती हा शतो जत्थो व्यक्तिगत जीवन मा किया चुनौती सामना करने भी किया सो समस्या का समाधान करने मा सक्षम भुंदा हा इंसान शतो ना। बेहतर जीवन मुलदा हा शतो शिक्षित मनु जो बेहतर वेतन वाली नौकरी मुड़ी पंदी ना और त्यारा जीवन स्तर किया सो सुदृगंधा। अगर कोई गरीब बारा बच्चा शतो सो बेहतर पढ़े गो या कोई भी फैमिली में बच्चा जो बेहतर पढ़ी गो तो सिर अपना जीवन भी बेहतर गुना सिरे सोगी सोगी सिरे परिवार रा जीवन किया सो भी बेहतर बुचगंदा शतो। और अगर तो बेहतरीन नौकरी तो पिले तो बढ़िया क्या हो सकता सुकून री सारी उम्र तुम दे निकलनी है। एक गल्ला तुसको और किसी भी प्रोग्राम में भी ना होने जो मोड़ शोता हूँ या किसी भी वीडियो स्टेशन में ना होने जो मोल सिर्फ तुसको वेड़ी गुंजन में होने जो मोड़ कर दी और खासकर अपनी गदयाली भाषा में होने मोड़ कर दी तेरा मतलब ये सीधा तुम दिला अंदर की आए गल बस कर दे होने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता री जानकारी मिलते हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा कर दे हा शोता और अपने जीवन रे बारे के सो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वास्ते स्वतंत्रता दिंदे हा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर किसी इंसान वास्ते हर किसी व्यक्ति वास्ते। तो आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो बढ़ंदन थोड़ी करी और हगूँ और मजे चु कर देना आइए जी फराटी फराटी सोगी सोगी लंदन उन्दनी गीत।

सो तो आज के कार्यक्रम में तो है सभी है एजुकेशन रे बारे जितना भी है अक्की घंटे दस से सकते थे सो है तो सो दस सो हेरा शिक्षा के एजुकेशन के सो सकारात्मक योगदान है तुंदे जीवन में सकारात्मक सोच है तुंदे जीवन में और ऐसा सोच जो बढ़ाना तुंदा काम हा कसकी हो रही रहा काम नहीं कसो की पढ़ना तो तुसो पहना है सो तो व्यक्ति जो जिम्मेदार हो नैतिक सिखंदे हा शिक्षा ताकि सो समाज में सकारात्मकता लेकर सकारात्मक सोच किया सो लेकर सकारात्मक योगदान किया सो व्यक्ति दिया जो वेल एजुकेटेड हा। चलिए श्रोताओं तो आऊँ सचिन कपूर ले लेनू तो सुथो इजाजत गदे गदे वाला चलो माँ बुढ़े री सेवा कर दे रहे और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सो एजुकेशन जो कैरी ऑन कर एजुकेशन जो अपू सो गे रखा श्रोताओं और पढ़ते चलना। नमस्ते धर्मशाला।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Oh!

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्म, माफ कीजिएगा गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। और श्रोतो कार्यक्रम में अब से लेकर के 8 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातचीत, आपका मनोरंजन करेंगे प्यारे प्यारे फिल्मी गीत सुनाकर, और साथ ही साथ धर्मशाला और आसपास की जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। श्रोताओ कार्यक्रम में सबसे पहले आइए जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 95%, और बूंदाबांदी यानी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। कहाँ हो रही है श्रोताओ? धर्मशाला में तो नहीं हो रही है, प्रॉपर धर्मशाला दाढ़ी सिद्धबाड़ी में तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जो हमारे ऊपर के इलाके हैं जैसे नड्डी, भागसुनाग, धर्मकोट, ये जो इलाके हैं या ये जो स्थान है, इनमें बारिश के दिनों में कंटिन्यू बारिश होती ही रहती है। और ये ऐसे ही बात नहीं कर रहे हम, ये आंखों देखा हाल है, क्योंकि आजकल अगर आप धर्मकोट जाएंगे तो आप देखेंगे कि धर्मशाला में तो धूप खिली है, लेकिन जैसे ही काला पुल क्रॉस करेंगे और नड्डी या कैंट का फरसेटगंज का एरिया आप क्रॉस करके आगे जाएंगे तो वहाँ पे बादल छाए होते हैं। और यही वजह है कि उन बादलों को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सैलानी भी आते हैं। और श्रोताओ बातचीत आपके साथ कार्यक्रम में आगे और भी करेंगे और साथ ही साथ जानकारियां भी साझा करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए और कार्यक्रम में एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये सबसे पहला प्यारा सा गीत। आस पास है खुदा, अनजाना अनजानी फिल्म का ये गीत है आप सभी के लिए, आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। श्रोताओ आज का विचार, अगर आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। श्रोताओ आज का विचार फिर से दोहरा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, अक्सर हम जिस परिवेश में जिस माहौल में रह रहे हैं या रहते हैं वहाँ पे एक चीज़ हमें बड़ी कह सकते हैं कचोटती है कि अगर ज़िंदगी में हम कुछ करेंगे तो उसको करने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि लोग इस बारे में या हमारे बारे में क्या कहेंगे। और जिस समय हम ये सोच बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे उसी वक्त हम अपने आप को हरा देते हैं। यही है हमारा आज का विचार और ये विचार मैंने काफ़ी समय लगा करके ढूंढा है। और APJ अब्दुल कलाम जी के ये शब्द हैं कि ज़िंदगी में अगर आप ये सोच लेते हैं कि लोग हमारे बारे में या हमारे काम के बारे में क्या कहेंगे तो उसी वक्त आपकी हार जो है वो निश्चित हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में भी कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नया कुछ शुरू कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास है, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है और आपको प्रतिदिन मेहनत करने की आदत भी है तो आप ये मत सोचिए कि मेरे बारे में फलां व्यक्ति या आस पड़ोस या दोस्त या समाज जो भी है वो क्या कहेगा। अगर आप अपने रास्ते पर सही हैं और आपको मेहनत करने की आदत है तो आपको ज़िंदगी में कोई भी नहीं हरा सकता। आप अपने रास्ते पे निडर होकर के आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोतो कार्यक्रम में आप आनंद उठा रहे हैं प्यारे प्यारे से फिल्मी गीतों का और साथ ही साथ बातचीत का आनंद मैं उठा रही हूं अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ। आपके साथ जानकारियां भी साझा करेंगे श्रोताओ कार्यक्रम में और क्या कुछ खास है आज के दिन के बारे में ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये सब समय समय पर हम बताएंगे ही। साथ ही साथ आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे से जो गीत हैं वो भी मैं लेकर के आई हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में अब एक गीत है और इस गीत के बारे में मैं जब भी इस गीत को सुनाती हूँ तो कहती हूँ ज़रूर कि ये जो गीत के बोल हैं ये हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उतरते हैं और उतरने चाहिए। खैर गीत है जो आपको सुनवाएंगे इश्किया फिल्म का गीत है श्रोताओं और गीत के बोल हैं दिल तो बच्चा है जी। और श्रोताओं दिल जो है वो वाकई में बच्चा है और हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। उम्र बढ़ती है और हम उस अपने अंदर के बच्चे को ना मार देते हैं और जैसे ही हम अपने उस अंदर के बच्चे को जो है वो शांत करने की कोशिश करते हैं या एक तरह से कह सकते हैं कि मार देते हैं तो हमारे खुशी कहें या एक्साइटमेंट या ज़िंदगी में जो भी नया कुछ करने की जो एक एक्साइटमेंट होती है एक उस काम को करने से जो हैप्पीनेस मिलती है वो कहीं ना खो जाती है और हम बड़े फॉर्मल से होकर के दुनिया को दिखाने के लिए बस हल्की सी स्माइल फेस पे ले आते हैं और अपने उस अंदर के बच्चे को जो है वो कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। और वहीं दूसरी ओर होता ये है दोस्तों कि जो भी इंसान आपने देखा होगा बच्चे की तरह हंसता है खिलखिलाता है अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया होता है चाहे वो छोटा ही हो उसको करने के लिए बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाता है तो वो जो है वो ज़िंदगी का असली मज़ा जो है वो ले जाता है। तो मैं इस गीत को तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ इसके जो शुरुआती बोल हैं दिल तो बच्चा है जी इसको सुन करके ही मुझे लगा कि आपके साथ ये साझा करना चाहिए कि हमारे अंदर हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है और जब तक हम उस बच्चे को अपने अंदर ज़िंदा रखते हैं हमें ज़िंदगी बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत लगती है और जब हम दिखावे के लिए या दुनियादारी के लिए उस बच्चे को जो है वो अपने अंदर से भगा देते हैं कहीं तो ज़िंदगी बड़ी नीरस और उदास सी हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी को अगर आपने खुल के खुशी के साथ हंसी के साथ जीना है तो अपने अंदर के उस बच्चे को ज़रूर आप ज़िंदा रखिए और ज़िंदगी को खुश होकर के ज़िंदा दिली के साथ आप जिए। और श्रोताओ इस गीत के बारे में चर्चा बहुत हो गई अब सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। थोड़ा सा गंभीर भी है गीत लेकिन इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। तो चलिए एंजॉय कीजिए कार्यक्रम में इश्किया फिल्म का ये प्यारा सा गीत दिल तो बच्चा है जी।

जी अशुतो, दिल तो बिल्कुल बच्चा है और इसी बच्चे का जिक्र मैंने गीत सुनवाने से पहले आपके साथ किया था कि आपके अंदर का जो बच्चा है उसे बिल्कुल आप मरने मत दीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर का वो बच्चा है तब तक आप भी जिंदा है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी आप जी रहे हैं और जियेंगे। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम

6 अगस्त को यानी परसों, और रमन भरमौरिया ने अपील की है सहयोग के लिए, और साथ ही साथ मैं भी आपसे अपील कर रही हूं, क्योंकि आप लोगों ने शायद, श्रोताओं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक वीडियो छोटी सी वायरल हुई थी जिसमें कि विद्युत विभाग में जाकर के कुछ लोग, हमारे संवाददाता भी हो सकते हैं, किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स भाई साहब थे, और उन्होंने एक तरह से छापा मारा कि आज लाइट नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपकी फ़ोन लाइन भी बंद है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने अपना आक्रोश जो है वो भी निकाला था, और हमारे विद्युत विभाग में जाकर के ये भी उन्होंने कहने की कोशिश की थी पूरे साम दंड भेद के साथ कि भाई अगर बिजली नहीं आती है तो उसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो मैं आपको रेडियो गुंजन की तरफ से और अपनी तरफ से बताना चाहती हूं कि 6 अगस्त को यानी 2 दिन के बाद बिजली नहीं होगी इन क्षेत्रों में जहां का मैंने नाम लिया है, जिनमें कि अपर बगली, मनेड़ और बगली के तहत आने वाले जो भी 7 लगते क्षेत्र हैं, वहाँ 6 अगस्त को बिजली नहीं होगी। और अगर 6 अगस्त को बारिश अधिक रही तो ये 7 अगस्त को कार्य जो है वो किया जाएगा, इसलिए सहयोग करें, और जब तक ये कार्य चलता है तब तक विद्युत विभाग का आप सहयोग करें। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय श्रोताओं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और मेरे साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं इस समय आप। गुड इवनिंग धर्मशाला, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में एक और जानकारी आपके लिए, जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नगरोटा में प्रस्तावित वाहन ओवरपास निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं निर्माण कार्य को सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक नगरोटा बाईपास क्षेत्र में स्थित मौजूदा एमटीआर सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस अवधि में वाहनों की आवाजाही को कवाड़ी गांव, चाहड़ी गांव, बट्टू चौक, रनूह मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा। श्रोताओं ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं बता दें आपको कि आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त को एक बहुत ही खास दिवस एकल कामकाजी महिला दिवस यानी सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे जो है वो भी मनाया जाता है। और इसके बारे में हमारे जो उद्घोषक हैं रुचिका, उन्होंने सुबह गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में भी आपके साथ इस विषय पर बात की थी कि आज है एकल कामकाजी महिला दिवस, मैं भी करूंगी। और क्योंकि कार्यक्रम में आपके साथ जानकारी साझा की और काफ़ी अंतराल आ गया है, इसलिए अब आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर। सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे के बारे में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है श्रोताओं 3 Idiots फिल्म से गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। और ये गीत भी बहुत ही प्यारा सा गीत है श्रोताओं। जिंदगी में कई बार हम थका सा, हारा सा, या यूं कहें कि हमें लगता है कि जिंदगी जो है वो दोबारा से नए सिरे से शुरू करने की हमें ज़रूरत है, तो इस तरह के गीत सुनना और इस तरह के गीत हमारे जहन में भी आते हैं। और उन्हीं गीतों में से एक है, जब भी आपको लगता है कि दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए या करते हैं, तो इस तरह के गीत आप ज़रूर सुने। और आपको सुनवा रहे हैं रेडियो गुंजन से डायरेक्ट आपके रेडियो सेट्स पर 3 Idiots फिल्म का ये गीत।

औरों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में श्रोताओ अब कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत बिल्कुल तैयार है। श्रोताओ जिंदगी में अगर रंग ना रहे, रस ना रहे, या यूं कहें कि मिर्च मसाला ना रहे, तो जिंदगी भी ना ठीक उस खाने की तरह फीकी फीकी और बेस्वाद सी लगती है। इसलिए ज़िंदगी में रंग भरने के लिए जो है मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। और मनोरंजन खासकर आपकी पसंद के अगर गीत हों तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और कार्यक्रम में अब और भी ज़्यादा रंग भरने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए सुरवा रहे हैं आपको बीवी नंबर 1 फिल्म का ये प्यार सा गीत।

91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, इस मिर्च मसाले वाले गीत के बाद अब आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा जानकारियों की और बात करेंगे आज के दिन के बारे में, एकल कामकाजी महिला दिवस। जी हाँ श्रोताओं, सिंगल वर्किंग वुमेन्स डे आज मनाया जाता है। हर साल 4 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है, जो समाज और अर्थव्यवस्था में अकेली कामकाजी महिलाओं के योगदान, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। क्या है इस दिन का महत्व श्रोताओं, ये भी जान लेते हैं। आज के दिन का महत्व श्रोताओं, सशक्तिकरण का सम्मान। ये दिन उन महिलाओं के साहस को सराहता है जो बिना किसी पारिवारिक सहारे के अपने दम पर जीवन और करियर संभालती हैं। रूढ़ियों को तोड़ना, समाज में अकेली महिलाओं से जुड़े पुराने कलंक और नकारात्मक विचारों को दूर करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता की पहचान, ये दिन उन पेशेवर सफर और सफलता की कहानियों को मंच देता है। श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, अब आगे चलते हैं फिर से गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, ये जो कार्यक्रम है ये आप सुनेंगे 7:05 पर भी, उससे पहले 7 आप सुनेंगे समाचार। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस समय जो भी लोग गाड़ी चला रहे हैं या इस समय अगर नहीं भी चला रहे हो और जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते समय हमारे जो यातायात के नियम हैं उनका ज़रूर ज़रूर पालन करें। अक्सर कहा जाता है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम लोग जो हैं अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में जो है वो मोबाइल फ़ोन भी चलाते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। ऐसे में श्रोताओं, दुर्घटनाएं होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये किसी नियम की अवहेलना करना तो है ही, साथ ही साथ अपने जीवन के साथ खेलना भी है। इसलिए मोबाइल फ़ोन के साथ साथ जो अन्य यातायात के नियम हैं उनका भी ज़रूर पालन करें और ईश्वर के दिए हुए इस अनमोल प्यारी सी जिंदगी को आप जो है वो अच्छे से खुशी से खुशहाली के साथ जिएं। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो गुंजन धर्मशाला, आपका अपना रेडियो चैनल। और अब कार्यक्रम में समय हो रहा है समाचारों का, यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन चल रहा है, उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापूल थोंगसांगना और चानो एम्पोन चारोइन केतमोन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

1491.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और समाचारों के बाद और अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अंतराल के बाद चलते हैं मनोरंजन की ओर। सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एकल वर्किंग वुमेन्स, सिंगल वर्किंग वुमेन्स के बारे में, उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में और किस तरह से वो अपने जीवन को चलाती हैं व्यवस्थित करके। हर किसी को लगता है कि एकल वुमेन है तो उसे सिर्फ ऑफिस का काम होता होगा और ज़िंदगी जो है वो मज़े की कटती होगी, मज़े के साथ वो जीती और रहती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है श्रोताओं की, जब कोई महिला अपने पैरों पे खड़ी होती है, उसकी अपनी खुद की पहचान होती है तो वो मज़े के साथ जीती है, लेकिन उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों का भी कोई अंत नहीं होता है। एकल महिला वही है जिसने सुबह उठ करके घर के सारे कामकाज करने हैं, बच्चों को संभालना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, अपने लिए भी टिफ़िन तैयार करना है और जिस ऑफिस में जिस जगह वो काम करती है वहाँ के लिए भी प्रिपेयर होना है, और इतना सब कुछ करने के बाद दिन भर काम करना है और शाम को वापस आके फिर घर की वही रूटीन, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, अपने कल के आने वाले दिन के लिए फिर से तैयारी करनी है, तो ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं होती है। इसीलिए आज का दिन जो है वो समर्पित है एकल वर्किंग वुमेन्स के लिए कि किस तरह से वो अपने जीवन में बहुत से बलिदान भी करती हैं, बहुत से त्याग भी करती हैं। तो आज का दिन उन सभी एकल महिलाओं को समर्पित है जो अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मेहनत और त्याग और बलिदान करती हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला मेरे साथ। और कार्यक्रम में अब एक तारा, जी हाँ एक तारा, बहुत ही प्यारा ये गीत है, सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम में अगला ये प्यारा सा गीत एक तारा। एंजॉय कीजिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और दोस्तों कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत डियर जिंदगी फिल्म का ये गीत है। इंजॉय कीजिए अपनी रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओ, डियर जिंदगी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपने इस गीत को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और अगर नहीं देखी है तो मैंने काफ़ी समय पहले देखी थी और इस फिल्म की कहानी मुझे अच्छी लगी, या यूँ कहें कि हर कहानी कुछ ना कुछ संदेश हमें देती है। तो इस फिल्म की कहानी का जो संदेश था वो कुछ इस तरह से था कि आलिया भट्ट जो कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, और हम लोग भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में कई बार कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। और इसमें खासकर कन्फ्यूज़न इस तरह से थी कि आलिया भट्ट को लगता है शायद मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में वो लोग नहीं जुड़ते जिनके साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ, जिनके साथ मैं फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, या यूँ कहे कि जिसको मैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तो वो एक चीज़ ढूंढती है हर इंसान में जो उसको अच्छी लगती है, तो थोड़ी देर उस इंसान के साथ वो समय बिताती है, फिर उसे लगता है ये बोर करने वाला है, ज़िंदगी में बोरियत आ गई है फिर से, फिर वो मूव ऑन करती है। थोड़े समय के बाद किसी दूसरे इंसान से मिलती है, फिर उसे लगता है कि यहाँ ज़िंदगी थोड़ी ठीक ठाक है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। उसके थोड़े समय के बाद उसे वहाँ से भी जो है वो नीरसता और उदासी लगने लगती है। फिर एक व्यक्ति मिलता है जो कि म्यूज़िक में होता है, जो गिटार वगैरह बजाता है और उसे गीत वगैरह गाने का शौक़ होता है। तो उसके साथ थोड़ा बहुत जो इस फिल्म की हीरोइन है आलिया भट्ट, उसको लगता है कि हाँ ये मेरे टाइप का है और मुझे इसके साथ ज़िंदगी जीने में जो है वो मज़ा आएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए गाना गाती है उसके साथ, गिटार वगैरह बजाती है, लेकिन वो भी क्षणिक होता है। वो थोड़ी देर उसके साथ जो समय स्पेंड करती है उतनी देर उसे अच्छा लगता है, बाकी जब वो उसके साथ रहती है तो उसे उसकी ज़िंदगी की जो जो रहने का स्टाइल होता है, अंदाज होता है, उसमें कमियां नज़र आने लगती हैं। उससे लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, इसके साथ भी मैं नहीं रह पाऊंगी खुश, या हो सकता है मेरे ही अंदर कुछ कमी है कि मुझे कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं मिल रहा है और मैं किसी के साथ भी जो है वो लंबे समय तक नहीं रह पा रही हूँ। तो इसी कहानी के बीच में हमारे जो शाहरुख खान साहब हैं वो एक साइकेट्रिस्ट की तरह काम करते हैं और वो उसके साथ काफ़ी समय बिताते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमें बहुत से लोग जो हैं बहुत कुछ उनमें सिमिलर लगता है, लेकिन एक ही इंसान में सारी खूबियां हो जो हम चाहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एक ही इंसान के साथ जो है वो ज़िंदगी ना बिता पाएँ। इसलिए आपको ज़िंदगी में दोस्त भी बनाने पड़ते हैं, कुछ समय रिश्तेदारों के साथ भी बिताना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम जो समय एक दूसरे के साथ बांट करके बिताते हैं उसमें ज़िंदगी का मज़ा आता है, छोटी छोटी खुशियों में ज़िंदगी का मज़ा आता है, ना कि इस तरह से कि एक ही इंसान में हमें वो सारी खूबियाँ उड़ेल के मिल जाएँ जो हम चाहते हैं या जो हमने कल्पना की होती है। तो ऐसा कभी भी किसी भी इंसान या किसी भी कपल के साथ नहीं होता है, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। और फिल्म के अंत में जब आलिया को ये समझ आता है कि वाकई ऐसा होता है ज़िंदगी में, तो वो अपने आप अकेले रहना डिसाइड करती है बजाय किसी के पीछे जाने के। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का सार, इस कहानी का अंत, जो कि कई बार हमें भी कंफ्यूजन होती है कि हम क्या करें, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ समय खाली बैठ करके हमें ये सोचना होता है कि हम चाहते क्या हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या वाकई में हमें किसी के साथ रहना अच्छा लगता है या हमें ज़्यादातर अपने ही साथ रहना अच्छा लगता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद के साथ समय बिताना, अपने ही साथ समय बिताना अच्छा लगता है बजाय इसके कि किसी के पीछे भागने के। तो ये था इस कहानी का सार, इस कहानी का अंत भी। और चलिए, कहानी की तो बात हो गई, कहानी के जो गीत है वो भी आपको सुनवा दिया, लव यू ज़िंदगी, की ज़िंदगी को हम प्यार करते हैं और प्यार करना चाहिए ज़िंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ करके, उन छोटी छोटी खुशियों को जी करके। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और अब तारे ज़मीन पे ले आते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में अगला प्यारा सा गीत तारे ज़मीन पे फिल्म से। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आज 4 अगस्त को मनाते हैं एकल महिला दिवस। एकल जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जो भी त्याग बलिदान किए होते हैं उनको समर्पित होता है आज का 4 अगस्त का दिन। और ये बात कहते हुए श्रोताओं, मुझे एक बात और जहन में आई जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि एकल महिलाएं जो कि एकल हैं और समाज में उनकी छवि एकल महिला की ही है, सबको पता है वो सिंगल वर्किंग वुमेन है, उनको तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि हाँ ये एकल है, मेहनत कर रही है, सब कुछ देख रही है। लेकिन परिवारों में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके कहने को बहुत से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पति भी होता है, सास ससुर देवर ननद जेठ जेठानी सब कुछ भरा पूरा परिवार होता है, लेकिन बावजूद उसके भी घर की सारी जिम्मेदारियां सारे काम सिर्फ और सिर्फ उस एक महिला के ऊपर होती हैं। उसे सुबह बच्चे भी देखने हैं, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका खाना भी बनाना है, उन्हें समय पर दवाई भी देनी है, कई बार उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाना होता है चेकअप के लिए, पति का भी सारा काम काज करना होता है, कपड़े समय पर देना, खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करना वगैरह वगैरह जो भी घर के काम काज होते हैं। साथ में कई बार परिवार में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, मान लो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मान लो कोई भी परिवार का सदस्य हो सकता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी उस एक महिला या यूं कहें कि उस घर की महिला जो बहू है उसके सिर पर आ जाती है। तो कहने को तो पूरा घर परिवार होता है, घर के खूब सारे सदस्य होते हैं, लेकिन सारे के सारे काम सारी की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ उस एक महिला के ऊपर आ जाती हैं। तो ये महिला उस महिला से भी ज़्यादा दुखी और परेशान होती है अंदर से, हमें ऐसे लगता है, क्योंकि कहने को बहुत से लोग हैं, हाथ बटाने को बहुत से लोग हैं, लेकिन असल में जब उसे कुछ करना है तो उसके साथ कोई भी नहीं होता और सारी जिम्मेदारियां सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे काम उसी को करने होते हैं। तो इसका समाधान क्या है श्रोताओं? इसका समाधान यही है कि

अगर परिवार में चाहे आपकी बेटी है, बहू है या जो भी कोई है, आपको लगता है कि उसके ऊपर घर का जो भार है, कार्यभार ज़्यादा हो गया है, तो कुछ ना कुछ उसका हाथ बटा सकते हैं हम। अगर वो खाना बना रही है तो सब्जी ही कटवा सकते हैं हम। घर के जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं वो भी बेड पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के कुछ ना कुछ हेल्प करवा सकती हैं। और बहुत से परिवारों में होता है कि सब मिलजुल करके काम करते हैं, वो परिवार बड़े अच्छे से हंसते खेलते और फलते फूलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर परिवार में ऐसी ही स्थिति होती है महिलाओं की। कुछ एक परिवार हैं जिसमें कि कहने को बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उस अकेली महिला के ऊपर जो है वो घर का सारा भार और प्रेशर होता है। तो ऐसी महिलाओं को भी हम आज के दिन बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि उनका योगदान जो है इस तरह से परिवार को संभालने का, उसके लिए उन्हें शत शत नमन करते हैं। और उनके परिवार के सदस्यों से ये आग्रह करते हैं कि अपने घर की महिलाओं का जो है हाथ ज़रूर बटाएं। अगर वो वर्किंग है तब भी हाथ बटाएं, वर्किंग नहीं है, और कई बार वर्किंग नहीं जो होती हैं उनके ऊपर ना और भी डबल जो है वो भार होता है। तो मेरी इस पूरी बातचीत का कंक्लूज़न यही है कि घर की महिलाओं का हाथ ज़रूर बटाएं। इससे घर के परिवार के सदस्यों में प्यार भी बढ़ता है, तालमेल भी बढ़ता है, और हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का वो होता है ना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, वो निकालने का भी समय मिल जाता है। श्रोताओं, बातें बहुत हो गई हैं, लेकिन ये बातें जो है ये ज़रूरी भी थी करना। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ कार्यक्रम में आनंद उठाइए। कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का और गीत के ठीक बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को लाया भारत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गरीब परिवारों को इलाज की बेहतरीन सुविधा देने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाएगी सरकार। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जयंती पर किया गया याद। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। शिमला पुलिस ने शोभी के समीप हरियाणा के तस्कर से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ आंकी गई। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 7 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगोड़ा आर्थिक अधिनियम लागू हुआ और एक एकीकृत खुफिया आधारित व प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया गया, जिससे भगोड़ों को वापस लाने का रास्ता साफ हुआ। गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछली सरकारों में भगोड़ों को वापस लाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन मोदी सरकार ने भगोड़ों के प्रत्यार्पण को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। मंत्रालय के अनुसार मोदी सरकार वर्ष 2019 में एनआईए संशोधन अधिनियम और यूएपीए संशोधन अधिनियम लेकर आई व 2020 के बाद भगोड़ों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को मिशन मोड में आगे बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार राज्य के गरीब परिवारों को इलाज की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस नीति के तहत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई बीमा नीति के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख परिवार शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी व मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रिमंडल के सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच विधानसभा परिसर में भी डॉक्टर परमार की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार के आदर्श व उनके दिखाए मार्ग से प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास व जन कल्याण के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: परमार साहब की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को और जो परमार साहब का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको हम अपने योजनाओं में डालकर धरातल में लाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार गाँव में CBSE योजना लेके आई, दूध का MSP लेके आई, गाँव में जो वन लगाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लेके आई, गाँव में बैठे हुए व्यक्ति के आय को बढ़ाने के लिए योजना लेके आई, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार को जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल के गठन से लेकर पूर्ण राज्य बनने और विकास की गाथा लिखने में सबसे अहम भूमिका हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो सपने उन्होंने देखे और उनके द्वारा बनाई गई ये नीतियां और योजनाएं हिमाचल के विकास में मील का पत्थर साबित हुई हैं। जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में हिमाचल की विकास यात्रा पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री पर कहा कि सरकार ने हिमाचल की विकास यात्रा में डॉक्टर परमार के योगदान के बाद अब सुक्खू सरकार के योगदान का जिक्र करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने कहा है कि बीबीएमबी ने हिमाचल में स्थित भाखड़ा बांध के गोविंद सागर जलाशय में डीसिल्टेशन की पायलट परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत बिलासपुर के लुहणु ग्राउंड और सीर खड क्षेत्र में अगले 10 वर्षों के दौरान लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शिमला जिला पुलिस की स्पेशल सेल ने शोघी के पास हरियाणा के एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस का दावा है कि ये वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी में से एक है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा की चार्जशीट कमेटी बनते ही सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करना शुरू कर दिया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुक्खू सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर झूठे मुकदमे, FIR, फोन टैपिंग और विधायकों की जासूसी करवा रही है, जिससे कांग्रेस के विधायक असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियां भूल गई हैं और 4 साल के कार्यकाल में ट्रांसफर माफिया व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राजेंद्र राणा ने कहा कि अगर सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करना बंद नहीं किया तो भाजपा मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट का काले झंडे दिखाकर स्वागत करेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिला में लगातार हो रही बारिश के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 8 करोड़ 32 लाख का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश के चलते नाहन विधानसभा के कटासन में एक खड्ड में 4 गुज्जर परिवारों के 25 लोग फंस गए थे, जिन्हें पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद लोग नदी नालों के किनारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिरमौर में अभी तक मानसून की वर्षा से करीब 52 करोड़ 73 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है।
2: जिला सिरमौर में कल रात से और आज सुबह से काफी बारिश रही। इसमें हमारे एक कटासन मंदिर के पास जो जलमूसा खड्ड है, 4 गुज्जर परिवार के 25 सदस्य हैं वो वहाँ पे पानी में फंस गए थे खड्ड में। इसमें हमारी पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड एंड होमगार्ड के जवान गए थे और प्रशासन ने उनको मौके पे क्विकली पहुंच गए और वहाँ पे उनका रेस्क्यू कर लिया और उनको सेफ जगह पे स्थानांतरित किया जा रहा है। अब तक का जो हमारे पास कंपाइल्ड डेटा है उसमें जो जिला सिरमौर का 24 घंटे का लॉस है वो 8.32 करोड़ का है और अब तक जब से बारिश शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 52.73 करोड़ का हमें नुकसान हुआ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कांगड़ा व सिरमौर जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला व सोलन में येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में आयोजित की गई। बैठक में आगामी संगठनात्मक व जन जागरण कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा कर उनकी रूपरेखा तय की गई। प्रदेश भाजपा सचिव व जिला प्रभारी सुमित शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास भाजपा का विशाल धरना प्रदर्शन, 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान और 8 अगस्त को शिमला में विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के परिमंडल कार्यालय और अधीनस्थ सभी प्रवर अधीक्षक, अधीक्षक डाकघरों के मंडलीय कार्यालयों में 21 अगस्त को डाक अदालत आयोजित की जाएगी। डाक अदालत में जनता की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को लाया भारत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गरीब परिवारों को इलाज की बेहतरीन सुविधा देने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाएगी सरकार। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जयंती पर किया गया याद, प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। शिमला पुलिस ने शोघी के समीप हरियाणा के तस्कर से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ आंकी गई। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 7 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप
3: श्रोताओ 91.2 MHz पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओ, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले दो।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की ईएमआई आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो ईएमआई भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो।

0: और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर?
3: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
2: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
3: ड्रग्स? सर, मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
2: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
4: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
2: और तो चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
5: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
6: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीस का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
7: ओह नो, 30,000 का?
6: हाँ
7: ले दो।
6: सच्ची?
7: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
6: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
7: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
6: बेबी पागल हो क्या? यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
7: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
6: Ha ha ha!

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
3: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 rupees का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो, 30,000 का?
8: हाँ
9: ले दो।
8: सच्ची?
9: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
9: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: बेबी पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है। आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
9: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?
8: Ha ha ha!